नमस्कार, FM बैंड 102.2 7 मेगाहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन शनिवार है, शक संवत 1948 दे वैसाख महीने दी 26 तारीख है। तदनुसार ईस्वी सन 2026 दे मई महीने दी 16 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे ने। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।

6 बजे जिंदगी नु खूबसूरत बनाते हुए पल होंगे, प्रोग्राम होएगा लव यू जिंदगी। और 6:20 ते साडे प्रादेशिक चैनल तो प्रादेशिक खबरां सुनोगे। और 6:30 ते लव यू जिंदगी प्रोग्राम इसे तरह जारी रहेगा। सात बजे तुसी सुनोगे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस और फिल्मी दुनिया दी सैर कराएगा प्रोग्राम होएगा फिल्मी दुनिया 7:02 ते। आठ बजे तुसी सुनोगे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस और 8:02 ते। आज शनिवार है, शनिवार दा सिलसिला होएगा नेट वाणी दा। नौ बजे तुसी सुनोगे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस और 9:02 ते प्रोग्राम होएगा दिल चाहता है। 10:00 तुसी सुनोगे शामे गजल और 10:03 ते प्रोग्राम होएगा एक प्यार का नगमा है। 6:05 हो रहे ने, वेला हो रहा पतीरा सिनार भरपूर प्रोग्राम वंदना नू सर्वन करन दा। आओ प्रोग्राम दे इस सफर दा आगाज करने आ मूल मंत्र दे नाल।

मुझ में तुझ में बस भेद यही है, मुझ में तुझ में बस भेद यही है। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में।

स्वार्थ बिना जो दे दिया, स्वार्थ बिना जो दे दिया वही हुआ अनमोल। ईश्वर ऋणी उस भक्त के, प्रेम न जाए तोल, प्रेम न जाए तोल।

और 1929 की गल करिए, अमेरिका ने हॉलीवुड विच पहली बार अकादमी पुरस्कार जिहड़ा आ ऑस्कर जिहड़ा आ उह दित्ता गया सीगा। 1975 दे विच जापान दे जिनको ताइबोन माउंट एवरेस्ट की चोटी के उत्ते पहुँचने वाले दुनिया की सब तो पहली महिला जिहड़ी है वह बनी सी। और 2013 अमेरिकी विज्ञानिका ने इंसानी खून के कलोन की सब तो पहली बार स्टेम सैल निकालन की कढ़न की सब तो वड्डी सफलता जिहड़ी है हासिल की सी। और इस दे नाल होर भी बहुत खास जिहड़ियां जानकारियां अज दे इस सिलसिले दे विच तुहानू ते सानू सुनन नू मिलेंगीयां, लेकिन नाल दे नाल प्रोग्राम दे विच म्यूजिकल ब्रेक होने चाहिए ने। छोटे छोटे गीत संगीत दा साथ तुहाडा ते मेरा बनिया रहेगा। दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग जलंधर, लेकिन कुछ खास हले भी बाकी है। सुनते रहो दिल दे नाल दिल जोड़ के।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

ਕੀ ਕੀ ਸੜਕ ਟੇੜੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਰਾਗ ਕੀ ਈ ਈ ਈ ਈ ਚਲ ਮੋੜ ਲੇ ਟਮਟਮ ਗਲੇ ਕੋ ਗਰਮ ਕਰ ਲੇ गले को गर्म कर ले छोड़ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम ता तारा पा पा पा ता ता ता तारा रा रा रा तारा पा पा पा ता ता ता ओ माय सीता

बिल्कुल जी, दिल से दिल तक 102.4 या 7 FM और न्यूज ऑन एयर ऐप और 103.6 MHz जरिए तुम बने हुए हो। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जालंधर। लो जी लो, तुसी गल कर रहे सी कि मैं कार चलानी सीख ली तुसी। अरे वाह, कार चलानी सीख ली। अच्छा, कार चलानी सीख ली, टू व्हीलर चलाना सीख लिया, तुसी कई एक चीज़ होर जिहड़ी सीखने वाली जरूरी सी, वो सीखी कि नहीं सीखी? ट्रैफिक रूल्स की पालना करनी सीखी कि नहीं सीखी? आहो, ओदी गल करदी मैं, होर केड़ी गल करनी आ। कार चलानी सीख ली, टू व्हीलर चलाना सीख लिया। लो जी, कह देने कि सड़क पर गड्डी चलाना सिर्फ एक स्टीयरिंग फड़ना जिहड़ा आ ओह नहीं है, सगों ट्रैफिक के नियमों, ट्रैफिक की जिहड़े एक साइंस हुंदे ने ना, उन्हों समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। कुछ साइंस जिहड़े मैं शायद रेडियो के जरिए थोड़े नाल एक्सप्लेन कर सकां, समझा सकां, तो उहदे विचों सब तो वड्डा साइन जे असीं गल करिए ट्रैफिक साइंस की गल करिए, लाल रंग का साइन जिहड़ा तुहानूं ऑन रोड मिल रहा है, यानी कि गहरे लाल रंग का सर्कल दे विच एक साइन होएगा वो तुहानूं मिलेगा। इहदा मतलब है कि पूरी तरह रुक जाओ, भावें सड़क खाली है, भावें उहदे उत्ते ट्रैफिक है, रुक जाओ मतलब रुक जाओ, स्टॉप हियर। नो एंट्री वाले एरिया दे विच जो तुसीं पार्किंग कर दिंदे हो ना, ते तुहाडी गड्डी टो करके लै जांदे आ, समझदे हो ना? ये समझ रहे हो ना, ये पता है ना? जिन्हें जिन्हें हुनी चलानी सीखी है उन्होंने दस रही हाँ। नो एंट्री का साइन उत्थे ही लगा होंगे जिथे गड्डिया के जाने की मनाही होवे, और ये साइन जो असी गल करिए एक सर्कल दे विच एक लाइन जिहड़ी है वो खिची होंगी है, इहदा ये सानू दसदा है कि इस रस्ते दे उत्ते जाण दी मनाही है, गलत रस्ते ते जाण नाल हादसा भी हो सकता है ते चलान भी हो सकता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਡਸਟ੍ਰੀਅਨ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਗੇ।

0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿਲ ਸੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੈਲੋ,
1: ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਡਮ।
0: ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਵ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ?
1: ਯੈਸ, ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ, ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ।
0: ਓਕੇ ਸਰ, ਸਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
1: ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਆ। ਦੇਖਿਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
0: ਜੀ,
1: 40-46 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
0: ਜੀ।
1: ਤੋ बॉडी के पहली चीज तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रखने के लिए, अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए
0: जी
1: सबसे जरूरी है गर्मी से बचाव करना
0: जी।
1: तो कोशिश करें कि जो पीक आवर्स होते हैं आफ्टरनून में, उस टाइम बाहर ना निकलें अगर बहुत जरूरी ना हो तो
0: जी।
1: और अगर निकलते भी हैं तो कुछ प्राथमिक उपाय हैं, जैसे कि व्हाइट कपड़े से अपने आप को सिर को ढक के
0: जी।
1: और दूसरा है कि मैक्सिमम वाटर इनटेक, मतलब पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें
0: जी सर।
1: और दूसरा है कि अगर एक चीज खास है कि जैसे आप गर्मी से अचानक अपने घर पे लौट रहे हैं तो अचानक से जैसे कुछ लोग नहा लेते हैं, ये कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा उसको अवॉइड करना है टेम्परेचर वेरिएशन।
0: यानी कि घर पहुंचते ही जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के तापमान में बहुत ज्यादा गर्म होता है और जाकर हम एकदम से जाकर नहा लेते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है।
1: बिल्कुल, पानी भी थोड़ी देर बाद आराम से पिए, पानी जाकर कोशिश करें कि नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही पिए, बहुत ठंडा पानी ना पिए
0: जी सर।
1: और
0: सर, और कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो इस गर्मी के मौसम में हम ले सकते हैं जिससे हम तंदुरुस्त रहें और स्वस्थ रहें?
1: जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको कुछ नेचुरल उपाय बता रहा हूँ। एक तो इस टाइम नींबू पानी घर पे सब लोग बना ही सकते हैं
0: जी,
1: तो ये सबसे अच्छी चीज है, नींबू पानी लेते रहे टाइम टू टाइम। दूसरा है लस्सी
0: जी,
1: पंजाब में तो लस्सी का भी बहुत चलन, ठंडी लस्सी वो भी ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और अगर ज्यादा और मेडिसिनल उपचार करना है किसी को, जैसे पेट की भी समस्या, तो बेल, सबको पता ही होगा बेल, बेल है, बेल का शरबत बना के ले सकते हैं उसको दिन में 2-3 बार। एक आता है आम, मैंगो, अनरिपन मीन्स कच्चा आम आता है, उसका आप हिंदी भाषा में उसको पना कहते हैं, शिकंजी पुदीने के साथ मिला के बना के वो भी ले सकते हैं। ये कुछ जरूरी उपाय हैं जो आप कर सकते हैं घर के लिए।
0: सर, मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं उनको लगता है कि हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, है ना? और पानी पीने की बात करें तो कई बार ज़्यादा पानी पीने से पेट भी भरा भरा महसूस करता है और पेट डिस्टर्ब भी हो जाता है, तो उसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है?
1: नहीं, ज्यादा पानी का मतलब ये है कि जितनी आपको प्यास है उतना ही पीना चाहिए, एक्सेस नहीं पीना चाहिए
0: जी। यानी कि लिक्विड फॉर्म में पानी के अलावा हम
1: जितनी आपकी क्षमता है उतना ही पानी पीजिए, उससे ज्यादा तो कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए।
0: यानी कि लिक्विड फॉर्म में अगर बात करें, जैसे आपने नींबू पानी बोला है, लस्सी बोली है, और भी अदर सोर्सेज हैं, मतलब पानी के अलावा जो एक लिक्विड फॉर्म में हमारे अंदर चीजें जानी चाहिए वो ये नहीं है कि सिर्फ पानी की फॉर्म में ही जानी चाहिए, अदर फॉर्म्स के द्वारा भी हम अपनी बॉडी को,
1: जैसे कि आम वाला मैंने बताया रेसिपी, ये आपको लू से बचाती है
0: जी। यानी कि
1: बेल वाली बताई, ये भी आपको लू से बचाव करती है।
0: सर, इसके अलावा अगर किसी का पेट डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इस मौसम में पेट भी बहुत ज़्यादा लोगों के डिस्टर्ब होते हैं, तो आयुर्वेद में इसका जो एक ट्रीटमेंट है, इसका जो इलाज है, वो कैसे किया जाता है?
1: पुदीने का सेवन कर सकते हैं आप, थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर।

0: जी
1: पुदीना आता है आजकल गर्मी में, तो पुदीने का शरबत ले सकते हैं
0: जी
1: नॉर्मल। बाकी तो फिर अगर ज्यादा दिक्कत है फिर तो मेडिसिन वगैरह की जरूरत पड़ती है
0: जी।
1: तो मेडिसिन का उपचार भी यहाँ पे बताना ठीक नहीं है, क्योंकि जो जनरल होम रेमेडीज है तो जैसे आप घर में अजवाइन है तो अजवाइन का पानी पी सकते हैं उसको, तो पुदीने का शरबत ले सकते हैं, नींबू पानी शिकंजी ले सकते हैं, तो घरेलू उपचार तो यही है
0: जी। यानी कि होम रेमेडीज से हम अपनी बॉडी का जो एक टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं ताकि बैलेंस जो है एक बना रहे और हम स्वस्थ रहें।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सर,
1: बिल्कुल।
0: इसके अलावा आप और क्या बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को जिससे वो अपने आप को गर्मी से बचा सकें?
1: यही है कि धूप में कम से कम निकलें अगर बहुत जरूरी ना हो तो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी पिए और जो मैंने कुछ चीजें बताई हैं
0: जी
1: पुदीना है नींबू है इनका सेवन करते रहें
0: जी
1: नेचुरल चीजों का, बाकी जो आर्टिफिशियल चीजें आती हैं उन्हें अवॉइड करें।
0: सर जैसे कि बच्चे इस जो हैं वो पैकेट वाला जूस है या अदर चीज़ें हैं वो ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, क्या मतलब उनको ये चीज़ें लेनी चाहिए या इसका अल्टरनेटिव सोर्स ये जो आपने बताया वही होना चाहिए?
1: नहीं अगर जूस कोई ले रहा है मार्केट वाला तो वो ले सकता है, मैं उसको अब ज्यादा डिनाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये कि घर में अगर चीजें अवेलेबल हैं तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। नींबू पानी ये चीजें नेचुरल है कम्प्लीटली, मार्केट में कोई भी चीज आएगी तो वहाँ पे डेफिनेटली उसमें प्रिजर्व करने के लिए चीजें डाले जाते हैं।
0: और सर
1: अगर फ्रेशली जूस ले सकते हैं आप कोई भी गर्मी में, तो गर्मी में देखिए गर्मी वाली चीजें भी भगवान ने बनाई है, कद्दू खीरा है ककड़ी है तरबूज है
0: जी,
1: तो जितने भी ये आपके फ्रूट्स हैं इसमें वाटर कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है,
0: यानी कि सैलेड भी अगर हम अपनी डाइट में ऐड करके रखते हैं तो हम अपने आप को अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचा सकते हैं।
1: जी जी जी
0: जी सर,
1: जितनी चीजें बताई हैं सब गर्मी में ही आती हैं और उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है।
0: जी सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, उम्मीद करते हैं कि हमारे लिसनर्स आपकी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर फॉलो करेंगे। प्रोग्राम में शॉर्ट नोटिस पर समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, डॉक्टर सौरभ जिहड़े सी इस वेले साडे नाल सी, जिन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिती है कि लिक्विड फॉर्म जिदा कि बहुत सारे लोग कह देंगे कि ज़्यादा तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए, पानी कई बार पानी दे नाल जिहड़ी साडी प्यास है वह शांत भी नहीं हो पाती, इस दे लई जरूरी है कि पानी नूं यानी कि लिक्विड फॉर्म दे विच जिहड़ियां चीज़ां जिवें कि लस्सी है गन्ने का रस है आम पन्ना है ये सारिया चीज़ा जिहड़ियां ये घर बनाइया जा सकदियां ने, और कुदरत ने सानू इहो जिहियां बहुत सारियां चीज़ां दित्तियां जिवें कि बेल दा जूस जिहड़ा आ उन्होंने दस्सिया कि वह भी असीं घर बना सकते हैं, उहदे लई भी कोई बहुत ज़्यादा समां जिहड़ा नहीं लगता, और ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां साडे बॉडी दे टैंपरेचर नूं मेनटेन करन दे विच और नाल दी नाल साडी बॉडी नूं डिहाइड्रेट होण तों बचाउंदियां ने, और उम्मीद करदी हां कि यह जानकारी जिहड़ी है साडे लिसनर्स दे जरूर काम आएगी। फिलहाल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर नूं इत्थे वाइंड अप करन दी दे दिओ इजाज़त एक छोटे जिहे गीत दे नाल।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, इस वक्त दिल से दिल तक आकाशवाणी दी 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से तुसी बने हुए साडे नाल। वेला हो रहा प्रोग्राम अड्डी टप्पा दा, आओ प्रोग्राम दे सफर दा आगाज करने आ इस खूबसूरत गीत दे नाल।

0: खान आज ये है एफएम रेनबो, इसी का नाम जिंदगी है प्यारे।
1: एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से नौमात्री ने और वेला हो रहा एफएम न्यूज़ हेडलाइंस का। पारा कथित

संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडारा लंबे समय ਲਈ एलपीजी सप्लाई ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के दूजे पड़ा से नीदरलैंड्स पहुंच गए ने। सीबीएसई ने 12वीं जमात के विद्यार्थियों लई उत्तर पुस्तिकावां के पुनर्मूलांकन की सहूलत का ऐलान किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक होने संबंधी मामले च एक मुख मुलजम पीवी कुलकर्णी नू पुणे तो गिरफ्तार कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई हेठ भारत ने 2047 तक नशा मुक्त भारत का राष्ट्रीय टीचा रखा है। पंजाब पुलिस ने लुधियाना ते होर थावां ते 132 विद्यार्थियों नूं गिरफ्तार करके उत्तरी भारत के हुण तक के सब तो वड्डे साइबर धोखाधड़ी सिंडीकेट का पर्दाफाश किया है। लिबनान ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ 4 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ NDRF, SDRF, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन दे सेमीफाइनल विच आज सात्विक साईराज रेकी क्रेंडी और चिराग शेट्टी दी डबल्स जोड़ी दा मुकाबला मलेशिया दे नूर इजुद्दीन अते हो दे से फेई नाल होएगा। आईपीएल क्रिकेट विच बीती रात लखनऊ विच खेडे गए मैच च लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स नूं 7 विकटां नाल हरा दिता है। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। FM ਬੈਂਡ 102.7 MHz 'ਤੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ।

हाँ जी, इंतजार कर रहे सी मेरा। अरे वाह जी वाह, तुसी मेरा इंतजार कर रहे सी, मैनू बहुत खुशी हुई। जी हाँ बिल्कुल, 102.7 FM यानी कि तुसी बने हुए हो आकाशवाणी दे नाल। और आकाशवाणी जलंधर आज मना रहा है अपने 78 साल पूरे होने की खुशी। मैं हाँ थोड़े नाल इस खुशी दे विच थोड़ी हम सफर बन के निशा। मेरे नाल प्रोग्राम दे विच खूब सारी मस्ती करनी है और थोड़े कल्ले हुए मैसेजेस प्रोग्राम नू सोहना बनाएंगे। 9855 1001027 2 7 कल्ले जे मैसेजेस की थोड़ी आकाशवाणी दे नाल।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21

0: कर साहबा मिर्जी दे बाकी हवा वन चीर दे होया पलंच तेरे बिना तो कोई दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे बिर तो हले करो ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन दे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बाकी सब कुछ फुला देवे।
3: एफएम रेन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। हुण तुसी सुणोगे प्रोग्राम पंजाबी तड़का।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जा

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਮ ਸਵੀਟ ਹੋਮ 'ਤੇ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ FM ਰੇਨਬੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ।
2: ਲਓ ਜੀ, ਜੱਟ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਣ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣੋ ਰਮਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ।

0: जैसे दीपक की हवा में चीर दे होया पलंग से तेरे वीर तो कोई हाथ दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हाले करो ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन दे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बाकी सब कुछ भुला देवे।
3: ओए होए, ओए गल नहीं बात नहीं देडी रात नहीं एवे रोला पाया सिर दुखड़ा लाया लगा यार एफएम रेनबो 102.7 मेगाहर्ट्ज़। हाय हाय गल बई सवाल आ गया उड़ाते तोते पाते मोछे। ओए होए, ओए गल नहीं बात नहीं देडी रात नहीं एवे रोला पाया सिर दुखड़ा लाया लगा यार एफएम रेनबो 102.7 मेगाहर्ट्ज़। हाय गल बई सवाल आ गया उड़ाते तोते पाते मोछे।
4: एफएम एंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। हुण तुसी सुनोगे प्रोग्राम होम स्वीट होम।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी एफ एम रेनबो जलंधर के प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज विच तुहाडा दोस्त आर जे रणजीत तुहाडा स्वागत करता है। दोपहर के इस सुहाने वेले विच असी लैके आए हाँ वह गीत जो सिर्फ कन्ना नाल नहीं सीधे दिल नाल सुने जाते हैं। अज के प्रोग्राम विच असी सुनांगे वह मेलोडीज गीत जिन्हां दी खुशबू अज भी संगीत प्रेमियों के दिलों विच वसदी है। साहिर दे शायरी अते शैलेंद्र दे एहसास, एस डी बर्मन ते मदन मोहन दा संगीत अते किशोर रफी लता हेमंत कुमार वर्गियां आवाज़ां दा जादू इस मिड डे मेलडी प्रोग्राम विच चलेगा। हुणी तुसीं गीत सुन के हटे हो खामोशी मूवी तो, बहुत शाम कुछ अजीब थी किशोर कुमार दी आवाज़ दे विच। 1969 विच आई इस फिल्म विच एक इमोशनल मास्टरपीस सी यह गीत। डायरैक्टर असित सेन ते मैंटल होस्पिटल दी बैकग्राउंड विच एक अजिही कहानी बनाई जिस विच प्यार भी सी, दर्द भी सी ते खामोशी भी। फिल्म विच राजेश खन्ना ते वाहिदा रहमान दी एक्टिंग बहुत सूटेबल, बहुत वधिया एक्टिंग सी। म्यूजिक इस फिल्म दे विच इस गीत नूं हेमंत कुमार ने दिता है ते लिरिक्स गुलजार दे सन। हुण तुसीं सुनोगे एक बहुत ही सोहना गीत जो ना तुम हमें जानो हेमंत कुमार दा गाया होया है गीत, ते फिल्म है बात एक रात की।

ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जानो, बात एक रात की। फिल्म तो यह गीत जिस फिल्म विच काम किया है देव आनंद वहदा रहमान दी क्लासिक केमिस्ट्री ने। क्लासिक केमिस्ट्री इस फिल्म दे विच दिखाई गई तो इस गीत नूं मैजिकल बनाउंदी है म्यूजिक कंपोज्ड जिहड़ा कीता होया है वो एस डी बर्मन दी मैजिक कंपोजिशंस ने। इस गीत विच मिस्ट्री भी है ते रोमांस भी है। हेमंत कुमार ते सुमन कल्याणपुर दीयां आवाज़ां विच गाया होया ए सॉफ्ट जिहड़ा वेलवेट लगता है गीत ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੂਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਕਿੰਨਾ ਪੀਸਫੁੱਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਪੀਸਫੁੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨੈਣ ਡਰੇ ਡਰੇ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਰਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਜੀਤ ਅਤੇ ਵਹਿਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਐਜ਼ ਆ ਸਟਾਰ, ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों

जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हेमंत कुमार की आवाज़ दे विच गाया होया एक गीत प्यासा मूवी जो 1957 विच आई सी। हुण तुसीं गीत सुनोगे ओ माजी मेरे सजन जिसनों गाया है एस डी बर्मन ने। ते जेकर गल करिए तो एस डी बर्मन ने कला म्यूजिक ही जड़ा है उहदे कंपोजर दे तौर ते काम नहीं करदे सी, ओ गाउंदे भी सी ते आवाज़ दे विच सुणांगे। गीत नूं लिखिया है शैलेंद्रा ने, तो फिल्म का नाम है बंदनी। तो करो इंजॉय इस गीत नूं।

गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर ही रहेगा, जो होगा वो होकर ही रहेगा, तो कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। प्रोग्राम चल रहा है जी दिल आज शायर है, तो तुसी बने हुए हो मेरे नाल, यानी कि अपनी दोस्त वंदना दे नाल इस खास प्रोग्राम दे विच, ते असी इंजॉय कर रहे हैं तुहाडे भेजे हुए बहुत ही सोहणे सोहणे मैसेज ते नाल नाल अज मैं तुहानू सुनावांगी होर भी बहुत सोहणे सोहणे खूबसूरत जे नगमे। प्रोग्राम दे विच जिन्हां ने हुणे ट्यून इन कीता है जी, मैं दस दवां एक वारी 9855101027 दे उत्ते तुसी अपने मैसेजेस मैनू भेजने ने, खूबसूरत जीआं लिखतां लाइनस, किसी पोइट नू फॉलो करदे हो तां उहनां दीआं लिखीआं होईआं लाइनस, या फिर जे तुसी आप लिखदे हो ते आप दीआं लिखीआं होईआं लाइनस, नंबर 9855101027 दे उत्ते प्रोग्राम दिल आज शायर है दे विच। ते लो जी प्रोग्राम दा पहला मैसेज मैं पढ़न जा रही हां, राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चेलियां सुल्तानपुर लोधी तो भेजिया इन्होंने मैसेज जी, बहुत ही खूबसूरत जिहा, कहिंदे आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया जी इस खूबसूरत जय मैसेज नू भेजन वास्ते। इस तो अगला मैसेज जड़ा आया है, वो मैसेज आया है जी लोहा बाजार मलेरकोटला राकेश कुमार जी, निकलदे ने आंसू जदों मुलाकात नहीं हुंदी, निकलदे ने आंसू जदों मुलाकात नहीं हुंदी, तड़पदा है दिल जदों गलबात नहीं हुंदी, तुसी याद ना आओ एदा कोई मौका नहीं हुंदा, असी तुहानू भुल जाइए इदां दी कोई रात नहीं हुंदी। बहुत बहुत शुक्रिया जी राकेश कुमार जी, इन्ना सोहना एक मैसेज भेजन वास्ते इस प्रोग्राम दे विच। खैर मैसेज बहुत सारे आ रहे ने होर भी, एक मैसेज आया जी बहुत खूबसूरत जिहा, थोड़े जे कोशिश करो कि तुसी छोटे मैसेजेस भेजो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे मैसेजेस जड़े ने ना वो प्रोग्राम दे विच शामिल करने थोड़े जे मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि मैं सारा मैसेज जड़ा ना वो तुहाडा पढ़ नहीं पावांगी उस लंबे मैसेज के कारण, इस करके कोशिश करो कि थोड़ा जहा छोटा मैसेज भेजो। खैर अगला मैसेज मैं पढ़ांगी इस सोहणे जे ट्रैक तो बाद, तुसी किते नहीं जाना, तुसी बने रहना मेरे नाल, प्रोग्राम चल रहा है जी दिल आज शायर है।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार

समंदर नहीं देखा, आंखों को देखा पर दिल के अंदर नहीं देखा। पत्थर समझते थे मुझे मेरे चाहने वाले, हम तो मोम थे, किसी ने छूकर ही नहीं देखा। एक होर बहुत ही सोना जहा मैसेज, जो ना मिल सका उसका इंतजार क्यों, जो ना मिल सका उसका इंतजार क्यों, जो मिल रहा है उससे इनकार क्यों। बड़ा मुश्किल है समझाने खुद को, बड़ा मुश्किल है समझाना खुद को, जिसको फिक्र ही नहीं हमारी उससे इतना प्यार क्यों। दिल आज शायर है, यही कहानी है। बहुत सोहना जहा लिखा है। कोई गल नहीं, कहानी इदा दी नहीं हुंदी। वैसे तो जो तुम भेजिया ना लाइनज़, इन्हों के एक्चुअल एक बहुत डीप मीनिंग भी है कि सही गल है। कई बार असी ना बहुत किसी अपनी इच्छा दे करके ना, मतलब उस इच्छा के पिछे इन्ना ज़्यादा भजदे हाँ कि जो साढ़े को एक्चुअल हों ना, असी उस चीज़ न उस खुशी नू माण ही नहीं सकते। बहुत सोहना जहा मैसेज भेजा है मुहम्मद मुजफ्फर मुहम्मद अरमान, पेंट खुर्द जिला मलेरकोटला तो। बहुत बहुत शुक्रिया इन्ना सोहना जिहा मैसेज भेजन वास्ते। इस तरीके दे नाल साडे नाल जुड़े रहो ते कुछ होर भी बहुत सोहने सोहने जे मैसेजेस आ रहे ने। ते एक चीज़ मैं तुहानू जरूर कहांगी कि कोशिश करनी है प्रोग्राम दे विच एक वारी दे विच सिर्फ इको वारी तुसी मैसेज भेजना, एक तो ज़्यादा मैसेज नहीं भेजने, ताकि सारे लिसनर्स नू जिहड़ा ना मौका मिले प्रोग्राम दे विच उन्हां दे मैसेज मैं शामिल कर सकां। ते उन्हां दीआं भेजियां होईआं खूबसूरत जिहीआं जिहड़ीआं लाइनस ने, जो भी उन्हां ने भेजिआ अपने दिलों, उहदे वह सारिया चीज़ा जड़िया ने इस प्रोग्राम दे विच मैं शामिल करा। इस करके प्लीज़ कोशिश करनी है कि एक वारी दे विच इको ही मैसेज आना चाहिए। खैर फिलहाल वक्त हो गया जी एक सोहने जे ट्रैक का, इस ट्रैक नू इंजॉय करो ते फटाफट तो आओ वापस प्रोग्राम दिल आज शायर है दे विच।

102.7 FM रेनबो ते दिल आज शायर है दा सफर खात्मे वल जा रहा है फटाफट तो। जी हाँ, प्रोग्राम दा ये सैगमेंट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ते ठीक 3 बजे असी मिलांगे साडे FM दिल्ली तो रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम दे विच ते देखांगे कि अज साडे वास्ते की खास है। पर फिलहाल प्रोग्राम नू अग्गे लैके चलदे हां ते देखदे हां कि अगला मैसेज किहदा आया। मैसेज है जी अगला सुभाष चंद्र वत्स गिद्दड़बाहा तो। हर चेहरे पर एक कहानी होती है, हर चेहरे पर एक कहानी होती है, दिल पर कोई चोट पुरानी होती है। हंसने वाले लोग कभी जब रोते हैं, हंसने वाले लोग कभी जब रोते हैं, दुनिया वालों को हैरानी होती है। मैसेज प्रोग्राम दे विच इन्ना खूबसूरत जिहा भेजण लई बहुत बहुत शुक्रिया। ते अगला मैसेज है जी उदय चंद्र जी दा। अज कह रहे ने जी, मैं बोलदा सां ओ सुणदी सी, मैं बोलदा सां ओ सुणदी सी, ते विच कदे ना बोली सी, ओ बोलदी सी मैं सुणदा सां, मेरी जीबा गूंगी बोली सी। हुण दोवें ही असी बोलदे हाँ ते सुणदा कुल मुहल्ला ए, कोई कहिंदा ए झल्लीए ते कोई कहिंदा ए झल्ला ए। जी बहुत तुसी वैसे एक्चुअल गल दे विच मतलब सच्चाई तो है ही है, क्योंकि कुछ टाइम बाद हुंदा तो इदां ही है कि पहला तो तुसी चुप सीगे ते फिर मैं भी चुप सीगी, ते फिर जदों असी बोलने हाँ ते फिर सारे महल्ले दे विच असी सुणांदे हाँ जी, सारा महल्ला सुणदा है। बहुत वधिया मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज भेजण वास्ते। ते अगला एक मैसेज है, मेरे सबर ते दुआवां दा नजराना है तू, मेरे सबर ते दुआवां दा नजराना है तू, मेरी तमाम खुशियां दा खजाना है तू, तेरे नाल हर पल खुशनुमा होया, मेरी हम सफ़र सुहाना है तू, मेरा हम सफ़र सुहाना है तू, मेरे गम उदासी तेनू सोच के नसे, मेरे गम उदासी तेनू सोच के नसे, मेरे हासियां दा यार बहाना है तू, मोह तेरा उदों बेशुमार आए, मोह तेरा उदों बेशुमार आए, जदों प्यार बड़े प्यार नाल जताना है तू। ए मैसेज है जी अमनदीप सिंह हठूर पिंड हठूर तो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी इना सोहना जिहा मैसेज भेजन वास्ते तुहाडा। ते जी प्रोग्राम जड़ा है वो बहुत जल्दी वाइंड अप करन दा वेला हो जांदा है, दिल तो नहीं करता है पर करना पैंदा है। खैर फिलहाल इस आखिरी गीत नूं सुनदे हां इस प्रोग्राम दे, बट इस गीत दे उस पार सिद्धा मुलाकात होएगी 4 बजे। 4 बजे हैलो जलंधर दे विच। ते फिलहाल आखिरी ट्रैक फटाफट जांदे होया एक बारी इंजॉय करदे हां प्रोग्राम दिल आज शायर है दे विच।

0: आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रेडियो डॉक्टर में आज का अंक फिर विशेष जैसे हर बार होता है और उम्मीद है हमारे सारे श्रोता हमारे साथ अब तक जुड़ गए होंगे। तो आप सब आ गए हैं हमें उम्मीद है, नहीं आए हैं तो फटाफट आ जाइए क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो गया है। हमारे विशेष विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर एस के रसानिया। आप डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
2: धन्यवाद शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार
1: जी। और आज का जो हमारा विषय है, हम आपको बता दें बहुत खास विषय इसलिए क्योंकि आज है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। तो आज का हमारा रेडियो डॉक्टर भी केंद्रित होगा डेंगू पर, स्पेशल ऑन नेशनल डेंगू डे। तो डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमारे श्रोता जानते तो हैं, मच्छरों से जनित ये बीमारी होती है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारी जिज्ञासा भी आपके मन में जरूर होगी कि अगर ये हो जाती है तो किस तरह से, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करने के लिए 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में और जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेते हैं। डॉक्टर साहब बताएं हमें कि ये डेंगू दिवस का जो अवेयरनेस हम करते हैं इस दिन, ये क्यों आवश्यक है?
2: शालिनी जी, जैसा आपने बताया कि प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है नेशनल डेंगू डे, इसलिए क्योंकि इस ये जो मौसम है, इस समय जो मौसम चल रहा है, इस मौसम के बाद में बरसात, बरसात के बाद में ये डेंगू से रिलेटेड सब बीमारियां काफी कॉमन होती हैं। तो लोगों को इसके विषय में जागरूक करना, लोगों को इसके बारे में बताना कि डेंगू किस तरह फैलता है, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में जानकारी होगी तभी हम इससे बचाव अपना कर पाएंगे।
1: बिल्कुल सही
2: जी। तो इसलिए इसको लोगों को इसके बारे में जागृत करना, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है।
1: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम शुरू करूं, शुरू तो हो चुका है लेकिन आगे बढ़ूं, मैं ये जानना चाहूंगी इसको डेंगू बोलते हैं कि डेंगी बोलते हैं, क्योंकि पूरे कार्यक्रम में मैं गलत ना बोलती रहूं।
2: वही है कि हिंदी बोलो अंग्रेजी बोलो, बात है कि डेंगी अच्छा। और डेंगी एक ही चीज है, डेंगू बोलो या डेंगी अच्छा। बोलो
1: गलत तो नहीं है, दोनों
2: गलत कुछ नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप उसको बोलेंगे तो डेंगी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी में डेंगू है तो डेंगू या डेंगी बात एक ही है।
1: चलिए, तो डेंगू डेंगी दोनों नामों से आप इसको जानते हैं, लेकिन प्रश्न वही है। अगर आप डेंगू या डेंगी से संबंधित कोई भी प्रश्न डॉक्टर साहब से करना चाहते हैं तो हमारे साथ सीधे जुड़िए। लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ, जीवन चलने का नाम है, चलते ही रहना है। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी तूफान से डरता नहीं है, लेकिन अगर हमें जीवन को खुशी से जीना है तो हमें स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ शरीर ही हर खुशी को, हर जो जीवन की सुख को अच्छे से जी सकता है, और इसीलिए हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए आता है, आपको स्वस्थ रखने के लिए। आज हम डेंगू विषय पर बात कर रहे हैं, तो और हमारे साथ डॉक्टर एस के रसानिया, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली, ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, पहले इनका प्रश्न सुन लेते हैं। हेलो।
1: हाँ, शालिनी मैम को शालिनता से ही नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब को भी प्रणाम।
2: नमस्कार।
1: मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा से। सर
0: जी, अपना प्रश्न करें आप।
1: यहाँ करमपुरा बिल्कुल नियरेस्ट पंजाबी बाग के पास है, गंदा नाला भी बहता है, यहाँ मच्छर बहुत ही ज्यादा होते, एक तरीके से कह लो कुंभ का मेला मच्छरों का लगा रहता है। कि जी, एक तो मैंने सुना है भैया पहाड़गंज में पंचकुला रोड है, वहां तो मच्छर होते ही नहीं, और उत्तम नगर में बिल्कुल मच्छर नहीं होते, और मैंने कहीं किताबों में पढ़ा है कि फ्रांस वाले तो मच्छर बला क्या है इसकी डेफिनेशन से ही वाकिफ नहीं है। तो अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या होती है जो हिंदुस्तान में इतने मच्छर होते हैं, और इसका कोई घरेलू उपाय बताए, बड़ी मेहरबानी होगी, खासतौर से जो डेंगू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: राजेंद्र जी, आपका प्रश्न बड़ा पेक्यूलियर है, पेक्यूलियर इन द सेंस आपने कहा कि मेरे इलाके में तो मच्छर बहुत हैं, और किसी दूसरे एक इलाके के दिल्ली का आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा वहां के लोगों को मच्छर देखे भी नहीं उन्होंने, और फिर तीसरा आपने कहा फ्रांस में उन मच्छर होते क्या उनको मालूम भी नहीं है। ये प्रश्न अपने आप में ही आपके प्रश्न जो है उत्तर है इसका, वो इसलिए क्योंकि देखिए जो कहीं जगह ऐसी है जहां पर कि ये जितने भी मच्छर हैं बेसिकली पैदा हो रहे हैं जहां हमारे आसपास का वातावरण कैसा है उसके हिसाब से। अगर आपके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं, गंदगी बहुत ज्यादा है, जहां पर कूड़ा करकट बहुत इकट्ठा हो रहा है, जहां पर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाएगा या जा कहीं पानी स्टेग्नेशन होगा, तो वहां पर मच्छर पैदा होंगे, क्योंकि मच्छर जो है पानी में पैदा होते हैं। तो जहां भी कहीं मच्छर पैदा होने के लक्षण या कारण मौजूद होंगे तो वहां मच्छर होगा, और जहां यदि जनता भी जागरूक होगी, अगर आसपास कहीं आपके मच्छर अगर कहीं पैदा होते देखें, अगर आप उन्हें खुद ही उस जगह को खत्म कर दें तो वहां मच्छर नहीं होंगे, ठीक है। और कहीं जनता अगर जागरूक होगी ये देखने के लिए किस तरह मच्छरों का अपने आप हम समाप्त कर सकें, या हम सरकारी तंत्र का उपयोग करके अपने आसपास के मच्छरों को समाप्त करा सकें, तो यही वजह है कि कुछ इलाकों में मच्छरों की बहुत ज्यादा तादाद है, कुछ जगह बहुत कम है, और कुछ जगह नाके बराबर है
0: जी। जी। और एक और प्रश्न डॉक्टर साहब इन्होंने किया था कि कोई घरेलू उपाय है क्या इसको ठीक करने का।
2: देखिए, मच्छर अगर पैदा हो रहे हैं कहीं भी तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा खुद का, स्पेशली जो डेंगू मच्छर है, डेंगू जो हम बोलते हैं एडीज मॉस्किटो, डेंगू जो होता है एडीज मॉस्किटो के कारण होता है, और एडीज मॉस्किटो जो पैदा होता है हमारे घर और घर के आसपास के वातावरण में पैदा होता है, जहां भी कहीं अगर पानी इकट्ठा होगा किसी भी जगह, अगर सिर्फ एक चम्मच पानी

0: यदि कहीं अगर कहीं इकट्ठा है उसमें अगर बरसात का पानी है, कहीं कोई पानी अगर इकट्ठा है तो बरसात या बरसात के दौरान में उस पानी में मच्छर पैदा हो जाएगा। तो कहीं भी अगर आपके अगर घर में कहीं मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छर आपको लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके और आपके घर के आसपास कहीं मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो देखिए कहाँ पैदा हो रहे हैं। जहां पे अगर पैदा हो रहे हैं तो उस जगह को, उस जगह जहां पानी स्टेग्नेशन अगर कहीं हो रहा है, पानी अगर इकट्ठा है कहीं भी है, तो उस जगह को आप सूखा कर दें।
1: जी, तो इसका उपाय यही है कि हम
0: जी
1: लोग मच्छरों को खत्म करना
0: बस
1: है,
0: जी जी जी
1: और मच्छर होते हैं पानी जमाव पे,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: पानी कहीं भी जमा हो तो वहां पर हम कोशिश करें कि ऐसा
0: देखिए
1: सफाई करें।
0: स्पेशली ये जो बरसात का समय है, बरसात का समय तो मच्छर पैदा होने के लिए बहुत ही मतलब फेवरेबल एटमॉस्फेयर है मच्छर पैदा होने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको जो जिस जो तापमान चाहिए, जो आर्द्रता चाहिए, ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में चाहिए, वो सब बरसात में उपलब्ध होती है मच्छरों के लिए। तो वो एक ऐसी चीज है कि जिसमें मच्छर बड़े आराम से पैदा होते हैं। तो ये आप देखें कि आप घर के अंदर, घर के बाहर, घर के आसपास कहीं भी, आपके घर पे अगर छत पे चले जाएं, कहीं अगर जैसे कहीं अगर बाहर कहीं खुले में जा रहे हैं, कहीं कोई टूटा हुआ कप है, टूटा हुआ कोई गमला पड़ा हुआ है, अगर उसमें कहीं जरा सा ही पानी इकट्ठा है, आप देखेंगे उसके अंदर पानी में बरसात या बरसात के टाइम में बाद में उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे लार्वा उसमें पैदा होंगे। तो यदि आपको कहीं भी ऐसा कोई जगह दिखती है जहां पानी जरा सा भी इकट्ठा है, इवन जो आपके पेड़ हैं, पेड़ के अंदर कहीं खोक बनी हुई है, कहीं पानी यहाँ इकट्ठा हो सकता है उसके अंदर, या कहीं बाहर कोई टूटा हुआ जूता, टायर, फटा हुआ टायर, कुछ भी, इवन घर के अंदर अगर आप देखें, घर के अंदर कहीं मनी प्लांट आपने लगा रखा है जहां आपकी पानी आप जिसमें पानी आप इकट्ठा करते हैं। और एक और बड़ी कॉमन चीज है जहां पर मच्छर पैदा होते हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो आजकल आपके फ्रिज जो आते हैं, फ्रिज फ्रिज के पीछे की जो ट्रे होती है जिसमें कि फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज जिसे आप बोलते हैं, जिसमें सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, पीछे उसके कंप्रेसर के पीछे पानी इकट्ठा हो जाता है, वो एक बड़ा ही फेवरेबल एटमोसफेयर है मच्छर पैदा होने के लिए। जो हमें बोलते हैं ना कि जो आपके घर के कूलर है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, आप यदि फ्रिज के पीछे की ट्रे को निकाल के बाहर देखें, उसके अंदर देखेंगे तो आपको उसमें मच्छर के लार्वा नजर आ सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो
1: उसके
0: ये
1: भी सफाई करना
0: तो
1: बहुत जरूरी
0: उसकी
1: है।
0: रेगुलर सफाई, हफ्ते में रेगुलरली उसकी भी सफाई करें तो सारे सारा पानी उसमें हटाते रहें, उसमें ये चीज बहुत जरूरी, ध्यान
1: जी,
0: रखिए
1: जी, बहुत
0: जी।
1: काम की बात है। डॉक्टर साहब, हमारे एक और श्रोता फोन लाइन
0: जी
1: पर।
0: बताइए।
1: हेलो,
2: सबको पहले मेरा नमस्कार आपको।
1: जी नमस्कार आपको।
2: मैं जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार
1: जी।
2: और हमारा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि जो दिन वाला मच्छर काटने से डेंगू होता है या रात वाला मच्छर काटने से डेंगू होता है?
1: जी
0: राजेश जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए राजेश जी, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो डेंगी मॉस्किटो है इसकी खास चीज वो है जो दिन में ये मच्छर काटते हैं, तो डे बाइटर बोलते हैं। डे बाइटर इन द सेंस कि जिस वक्त ये दिन होता है, दिन के समय मच्छर काटता है, रात के समय आराम करता है। और इसीलिए अगर आप देखें, डेंगी वाला मच्छर या मलेरिया वाला मच्छर जो है, उन दोनों में कौन सा ज्यादा खतरनाक है, वो दिन का मच्छर खतरनाक है। डेंगी मच्छर ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि दिन में काटता है, दिन में आप जो है कभी मच्छरदानी लगा के बाहर नहीं घूमते हैं। दूसरा, बरसात या रेनी सीजन के दौरान में आपको ह्यूमिडिटी बहुत होती है, आप पूरी बाजू के कपड़े पहनते नहीं, आप हाफ शर्ट या हाफ पैंट इस तरह के उसमें घूमते हैं, तो जितने भी आपके शरीर के एक्सपोज्ड पार्ट हैं तो वहां पर ये मच्छर आराम से काट दो। दूसरा, ये घर के अंदर अंधेरे में रहता है ये, तो कहीं भी आप अंधेरे में कोने में कहीं अगर बैठे होंगे तो वहां पर ये मच्छर काटता है। और दूसरा, एक और इस मच्छर की खासियत ये है कि जब आप दिन में मच्छर काटता है इसको, तो जो काटता है तो उसका थोड़ा पेनफुल होता है, इसका बाइट जो होता है, तो जैसे ही मच्छर काटेगा आप उसको उड़ा देंगे, तो इसका पेट एक बार के काटने से इसका पेट नहीं भरता है, एक बार के व्यक्ति का खून चूस के इसका पेट नहीं भरता। जैसे रात में अगर, जैसे जो रात के वाले के मच्छर होते हैं, वो किसी मच्छर के, अब व्यक्ति सो रहा है, सोते समय मच्छर काट रहा है, काटने का तो पूरा एक तृप्त होकर वो अपना उसका हट जाता है मच्छर, रात वाला जब मच्छर होता है। मगर जो दिन वाला मच्छर होता है, कम से कम 15-20 लोगों को काटने के बाद में उसका पेट भरता है,
1: मतलब वो फैलाता जाता
0: तो
1: है,
0: तो वो इन्फेक्शन फैलाता है। इसलिए डेंगू का कभी भी आउटब्रेक होता है तो इसलिए वो काफी लार्ज स्केल पर होता है। इसलिए जो डे बाइटर मॉस्किटो, ये डेंगू मॉस्किटो, इसलिए थोड़ा ज्यादा पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा खतरनाक मानते हैं हम लोग
1: जी। और आपने बताया कि ये बहुत तेजी से फैलता है, अगर
0: इसीलिए
1: आउटब्रेक की तरह होता है, इसीलिए अवेयरनेस की जरूरत है,
0: इसलिए लोगों को इस बारे में जानकारी जरूरी है कि दिन के टाइम में अपने शरीर को पूरा ढके रखें, ढके इन द सेंस की पूरी बाजू के कपड़े पहने, और हो सके तो रिपेलेंट क्रीम वगैरह, जो भी क्रीम वगैरह होती है जैसे मच्छर वाली क्रीम होती है, वो लगाएं। यदि बच्चे अगर दिन में सोते हैं तो उसको दिन में भी मॉस्किटो नेट के अंदर, मच्छरदानी में बच्चों को सुलाएं, ये बहुत जरूरी है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कुछ तो बताया कि ये सुबह काटता है, दिन में काटता है, इसको कुछ पहचान भी सकते हैं क्या देख के?
0: हाँ, ये बहुत जरूरी, इसको डेंगू मॉस्किटो को टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। एक चीज खास ये है कि एक तो ये जो तीन मच्छर अगर आप देखें,

0: एक और श्रोता है फोन लाइन पर। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
1: मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ।
0: जी राजा जी, प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
1: जी जी, किसी को डेंगू जब हो जाता है तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो डेंगू होने के बाद खास करके हमको किन बातों का ये ध्यान रखना है कि ज्यादा जो है ये बीमारी आगे ना बढ़ने पाए और कंट्रोल में रहे, ये जानना चाहते हैं।
2: राजा जी नमस्कार। एक तो एक चीज ये तो मुझे मालूम पड़ गया कि शालिनी जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि का मुझे, क्योंकि मैं भी रेगुलरली ये प्रोग्राम सुनता रहता हूँ और उसमें मुझे मालूम पड़ता है शालिनी जी वाकई काफी प्रसिद्ध हैं, लोगों में इनका काफी पहुंच है।
0: थैंक यू सर।
2: और दूसरा आपने एक प्रश्न पूछा कि ये जो डेंगू के बारे में हो जाए तो कैसे इसको क्या करें, तो पहले तो मैं इस बारे में राजा जी मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि डेंगू के लक्षण क्या है, थोड़ा ये जरूरी जानना जरूरी है। बिकॉज अधिकतर लोग जानते होंगे डेंगू लक्षण क्या है कि एक तो बहुत तेज बुखार आएगा और साथ में सर के आगे वाले हिस्से में काफी दर्द होगा, और दूसरा एक सबसे बड़ी चीज जो डेंगू के फीवर में खास होता है कि जब आप अपनी आंखों को घुमाएंगे, आंखों को घुमाने पर आपको आंखों के पीछे दर्द महसूस होगा, इसको बोलते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन। ये बड़ा पिक्यूलियर चीज होती है डेंगू वाले उसमें फीवर में, तो ये जब कभी स्पेशली जब आंख वगैरह घुमाएंगे तो उसमें आपको दर्द का एहसास थोड़ा ज्यादा होगा, ये बड़ी कॉमन और पिक्यूलर फीचर है। और साथ साथ में इसके पूरे शरीर में मांसपेशियों में जोड़ों में बहुत दर्द होगा, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर इसलिए बोलते हैं। और धीरे धीरे इसमें फिर आपका स्वाद भी थोड़ा चला जाएगा, भूख भी नहीं लगेगी, ये सब चीजें इसकी काफी चीज होती हैं। धीरे धीरे इसमें जब यदि यूजली ये 5-7 दिन तक ये अवस्था रहती है, यदि ये फीवर अगर आप इसको किस तरह कंट्रोल कर लेते हैं और फीवर इसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं तो उसके बाद में यदि सही हो जाए तो ठीक है, अन्यथा क्या होता है कि फिर लगातार उल्टी आना, उल्टी के साथ में कभी कभी ब्लड भी आ सकता है खून में, खून के साथ मुंह से खून की उल्टी भी आ सकती है, मुंह से या नाक से भी खून आ सकता है, जो आपके गम्स हैं मसूड़े हैं वहां से भी खून आ सकता है, शरीर के ऊपर थोड़ा रैशेज आ जाते हैं एक स्टेज के बाद में, शरीर पे जैसे खसरे के जैसे रैशेज होते हैं उस तरह के रैशेज शरीर के ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा आ सकते हैं, और बड़ी बेचैनी रहती है, और जब वो स्टेज थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है तो धीरे धीरे वो लक्षण के शरीर में कहीं ना कहीं हेमरेज हो रहा है, तो उसको पहली स्टेज होती है डेंगू फीवर की, दूसरी स्टेज होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर की, DHF बोलते हैं इसे हम। और यदि वो स्टेज अगर जो अगर उस समय अगर पेशेंट को अगर थोड़ा सावधानी ना बरते तो वही धीरे धीरे वो शॉक वाली स्टेज में पहुंच जाता है, जिसमें कि शरीर में से शॉक के सारे फीचर्स होते हैं, आपकी पल्स काफी कम हो जाती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ड्राई मुंह, आपका मुंह सूख जाता है, और ये सब चीजें लक्षण पैदा होते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम उसे हम बोलते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो अपने आप को ध्यान रखें, कब आपको डॉक्टरी सलाह लेनी है ये बहुत जरूरी है, कि ये थोड़ा जानकारी आपको हमेशा होनी चाहिए।
0: जी, ये हमें आपने काफी विस्तार से डॉक्टर साहब लक्षण बताए, लेकिन कुछ लक्षण इसमें मैं जब सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसे लक्षण चिकनगुनिया में भी होते हैं, जो आंखों में दर्द होना और हड्डी या पसलियों में दर्द होना, तो मच्छरों से फैलने वाली और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे चिकनगुनिया है, मलेरिया, इनके बारे में
2: आपने अच्छी चीज बताई, जो यही जो लक्षण होते हैं ये उसमें भी होते हैं चिकनगुनिया, मगर चिकनगुनिया बस एक चीज है, चिकनगुनिया हड्डी और जोड़ों में इतना ज्यादा दर्द होता है कि मतलब मरीज को उसमें उठा भी नहीं जाता है, तो वो जो बिल्कुल हड्डी जैसे तोड़ना जैसे बोलते हैं हड्डी तोड़, वाकई में हड्डी तोड़ टाइप की जो स्टेज आ जाती है वो चिकनगुनिया में काफी कॉमन होती है।
0: मलेरिया में
2: मलेरिया अच्छा आपने बोला, दूसरा प्रश्न था आपका कि मच्छरों से पैदा होने वाली और कौन कौन सी बीमारी, तो एक तो डेंगू वाला मच्छर होता है एडीज मस्किटो, उससे आपकी मेन तो दो बीमारी हो गई आपकी,
0: डेंगू
2: हो गया और चिकनगुनिया हो गया, दो चीज हो गई। अब बाकी जो मलेरिया वगैरह है वो आपका एनाफिलीज से मॉस्किटो से मलेरिया भी होता है, फिर कुछ वेस्ट नाइल फीवर और कई सारी बीमारी जो दूसरे हमारे यहाँ पर होती है, फाइलेरिया है, ये सब चीजें ये बीमारी भी होती है मच्छरों से पैदा होने वाली।
0: जी जी जी, तो इनके बारे में हम किसी और कार्यक्रम में बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास डेंगू के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे पहले और फिर आएंगे।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और मैंने ये देखा कि डॉक्टर साहब तो गाने में खो गए थे। नीला आसमान सो गया और डॉक्टर साहब खो गए।
2: बहुत ही प्रिय गीत है।
1: और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एस के रसानिया, बहुत बहुत अच्छे सिंगर हैं, और बहुत गाने और शायद आपकी रिकॉर्डिंग्स भी मैंने सुनी हैं, और आज उम्मीद है कि मैं यहाँ पर लाइव भी कुछ आपसे गवा पाऊंगी अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कुछ सुना दीजिएगा, चलते चलते हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे। और ये सारे जो आज गीत बज रहे हैं इस कार्यक्रम में, वो डॉक्टर साहब की पसंद के हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे मैसेजेस भी भेजे हैं। चाणक्य चौक गाजियाबाद से मनोहर लाल गांधी लिख रहे हैं कि डेंगू बुखार तेजी से चढ़ता है फिर उतरता है, और ये सिलसिला कितने दिनों तक रहता है प्लीज बताएं। डेंगू कितने प्रकार का होता है? क्या हम डॉक्टर की सलाह के बिना मेडिकल स्टोर से दवाई ले सकते हैं? ये सही रहेगा कि नहीं, प्लीज बताएं।
3: शालिनी जी, आपने जो प्रश्न पूछा उसमें कुछ प्रश्न का जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। डेंगू कितने प्रकार का होता है? अगर शुरुआती स्टेज में उसको बोलते हैं डेंगू फीवर, जिसको हम बोलते हैं साधारण जो वायरल फीवर की तरह से, जिसमें पूरे शरीर में पूरा फीवर होना, बुखार होना, हड्डियों में दर्द, जी मिचलाना और पूरे जोड़ों में दर्द, ये डेंगू फीवर। और यदि वो डेंगू फीवर का थोड़ा और अग्रणी रूप हो जाए तो डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें कि काफी कुछ चकत्ते शरीर में पड़ जाना और धीरे धीरे, और फिर उसका भी शॉक सिंड्रोम, वो थर्ड स्टेज होती है, वो मैंने आपको पिछले समय बता दिया। फिर आपने बोला कि जो क्या डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ले सकते हैं कि नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि कभी भी यदि आपको लग रहा है वायरल फीवर है, आपको लग रहा है कि डेंगू फीवर हुआ है, तो उसमें सबसे ज्यादा कुछ एक चीजें आवश्यक हैं कि कभी, क्योंकि बुखार काफी तेज होता है, तो बुखार को कम करने के लिए अपनी कोल्ड स्पॉन्जिंग से बोलते हैं कि अपने माथे पे ठंडे पानी की पट्टी रखना, ये शरीर को थोड़ा ठंडे पानी की पट्टियां रखना, ये सब चीजें जरूरी हैं। और यदि बुखार हो रहा है तो दिन में पैरासिटामोल, सिर्फ जो बुखार उतारने के लिए आप ले सकते हैं, दिन में तीन चार गोलियां ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई भी ये कोई ऐसी चीज नहीं कि उसमें, मतलब उद्देश्य यह है कि बुखार ज्यादा आपके दो दिन तीन दिन से ज्यादा ना रहे, तो सिर्फ पैरासिटामोल गोली आप ले सकते हैं, प्लस पानी लगातार लेते रहें, खाना कम ना करें, ये चीजें, वरना तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। मगर यदि आपको लग रहा है कि आपका बुखार कम नहीं हो रहा है, प्लस आपके शरीर में कहीं चकत्ते पड़ने शुरू हो गए हैं, या आपको खून की उल्टी या लगातार कुछ उल्टी आ रही है, या पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूल रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या मिथली बहुत ज्यादा, नौजिया वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, सीने में कहीं आपको लग रहा है।

0: थोड़ा जकड़न टाइप की महसूस हो रहा है, मुंह सूख रहा है बहुत ज्यादा, ये सब चीजें हो रही हैं, तो तब आपको डॉक्टरी सलाह तुरंत लेनी चाहिए। और तब यूजुअली अच्छा, इसमें एक और चीज है कि डेंगू फीवर में जब फीवर नॉर्मल आ जाता है तो उसके बाद में सेकंड पीक शुरू होता है फीवर का, वो थोड़ा एक थोड़ा डेंजर सिग्नल होता है, क्योंकि वो जो सेकंड पीक जो शुरू हुआ उसमें कई दफे डेंगी हेमरेजिक फीवर डेंगू शॉक सिंड्रोम वाले फीचर शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए डेंगी फीवर कम होने के बाद भी कुछ दिन थोड़ा सावधानी बरतें, ये थोड़ा आवश्यक है। ऐसा नहीं कि अगर 3-4 दिन फीवर का, अगर फीवर रुक गया और अगर आपको लग रहा है सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, मगर यदि फिर दोबारा से यदि टेम्परेचर बढ़ता है या आपको धड़कनें तेज होने लगती हैं या आपको मुंह सूख रहा है, कहीं वॉमिटिंग शुरू हो जाती है या कहीं मुंह से कहीं खून आने लगे या मसूड़ों में से कहीं खून आने लगे, नाक में से कहीं खून आने लगे, तो ये थोड़ा लक्षण है जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
1: जी। और डॉक्टर साहब, ऐसे भी सुना है कि इसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं और कभी कभी खून भी चढ़ाना पड़ता है, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता
0: देखिए
1: है।
0: आजकल वैसे जनता बहुत जागरूक हो चुकी है ऑलरेडी, उसमें यह कि जरा सा उनको लगता है कि उनको डाउट है तो खुद ही अपने आप जाके लैब में टेस्ट करा लेते हैं। प्लेटलेट काउंट उनका पहली चीज होती है, प्लेटलेट काउंट देखना, उनको लगता है कि अरे यूजुअली 1 लाख से ऊपर यदि प्लेटलेट है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 1 लाख से 4-4.5 लाख तक प्लेटलेट कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नॉर्मल है वो, ठीक है। मगर 1 लाख से अगर नीचे होना शुरू होता है तो उन लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मगर इसमें भी है कि यदि आपके प्लेटलेट अगर काउंट कम हो रहे हैं, 20,000 या उससे नीचे भी जा रहे हैं, तो डॉक्टर सलाह जरूर लें, डॉक्टर के पास जाएं। तो डॉक्टर अगर चाहेंगे तो उसमें यदि अगर शरीर में कहीं खून की कमी हो रही है या प्लेटलेट और भी कम हो रहे हैं तो डॉक्टरी सलाह पर डॉक्टर अपने आप उसको देख के, फिर मरीज को देख के डॉक्टर अपने आप इलाज करेंगे अस्पताल के अंदर, अपने आप से कोई इलाज ना करें उसके लिए, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है।
1: तो मुझे जहां तक समझ में आई डॉक्टर साहब आपकी बात कि बुखार को कम करने के लिए आप दवाई लेते रहें, पर जरा सा भी आपको लगता है कि 4-5 दिन से ऊपर हो गया है तो डॉक्टर के पास
0: डॉक्टर के पास जरूर जी।
1: हमारे पास ये एक प्रश्न आया है, नाम नहीं लिखा है उन्होंने अपने श्रोता ने, लेकिन लिखा है कि किस एज ग्रुप में डेंगू ज्यादा होता है, ऐसा कोई एज ग्रुप होता है क्या डॉक्टर साहब?
0: सभी इस एज ग्रुप में ये होता है, कोई उसमें वो सभी एज ग्रुप पर दोनों में, मर्द और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकता है डेंगू, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं। मगर हाँ बच्चों में थोड़ा सा ये इसका थोड़ा विकरालता थोड़ा ज्यादा होती है, थोड़ा सीवियरिटी इसकी थोड़ा ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे थोड़ा घर के अंदर ज्यादा रहेंगे तो उसमें ज्यादा उनको होता है, तो उसमें थोड़ा उसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है उनके अंदर थोड़ा जी।
1: हमारे श्रोता है विशाल मल्होत्रा सिरसा हरियाणा से, इन्होंने लिखा है कि घर के अंदर मच्छर को मारने के लिए अगर हम स्प्रे यूज करते हैं तो ये उपयुक्त होगा?
0: देखिए बिल्कुल सही बात है, मैं इसमें मगर एक चीज कहना चाहूंगा, आप यदि घर के अंदर जो भी स्प्रे करेंगे तो वो एडल्ट मॉस्किटो जो व्यस्क मच्छर है उसको खत्म करेगा, मगर रोग की जड़ जो है आप उससे देखें कि मच्छर कहाँ पैदा हो रहे हैं, जब तक आप उस रोग की जड़ को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि आपने आज तो एडल्ट मॉस्किटो मार दिया स्प्रे करके, मगर कल को जहां मच्छर पैदा हो रहा है, जिस जगह पैदा हो रहा है, अगर आपने वो सोर्स खत्म नहीं किया वो फिर दोबारा मच्छर वहां पैदा होकर आएगा। तो आप घर और घर के आसपास जरा देखें कहां पर मच्छर पैदा हो रहे हैं, आप उस सोर्स को खत्म करें, इसको हम बोलते हैं सोर्स रिडक्शन, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, आप रोग की जड़ों को खत्म करो ना, कि कहां मच्छर पैदा हो रहे हैं वो देखो, वो जगह पहले आप देखो कहां पर मच्छर पैदा हो रहे हैं उस जगह को खत्म करो।
1: नेहा लिख रही है मुंबई से डॉक्टर साहब कि डेंगू पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड बी द डाइट ऑफ डेंगू पेशेंट्स?
0: सब कुछ
1: थोड़ा तो आपने बताया था, पानी का इंटेक और
0: देखो एक चीज खासतौर ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी बुखार ज्यादा हो, कभी ये जरूरी नहीं कि इसी डेंगू फीवर में, कभी भी यदि फीवर ज्यादा होता है तो शरीर में पानी की कमी होती है, क्योंकि जब फीवर ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा एक मुख्य उद्देश्य होगा कि अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, पानी की प्रचुर मात्रा अपने शरीर में बनाए रखें। तो पहली चीज तो यह है कि नियमित रूप से पानी और या तरल पेय पदार्थों का सेवन करते रहें, प्लस जो हृष्टपुष्ट बनाने वाली चीजें हैं, जैसे जो घर की चीजें हैं, जैसे मेरे हमें याद है हमारे जो बचपन में डॉक्टर थे तो फैमिली डॉक्टर थे, कुछ भी चीज हो बोलते खिचड़ी दलिया खिचड़ी दूध चाय ये जरूर लेने, मतलब उनका कहना यह था कि कुछ ना कुछ खाते रहो मगर भूखे मत रहो, और खाने के लिए भी जरूरी नहीं कि आप बाजार की चीजें, घर की बनी हुई जो बिल्कुल सेहतमंद चीजें हैं वो सब लेते रहें। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि कभी खाना कम नहीं करना है और पीने के लिए तरल पेय पदार्थों का सेवन करते रहें लगातार। जी।
1: दिल्ली से परिधि लिख रही हैं कि क्या डेंगू होने की वजह से कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं? क्या ऐसा होता है कि एक बार डेंगू हो गया या बिगड़ गया उसका रूप तो वो ता जिंदगी उससे कुछ होता रहे नुकसान?
0: परिधि जी देखिए वैसे तो अभी वो विकराल रूप जो होता है, वो जो इस तरह का विकराल रूप जो होता है डेंगू

0: वो थोड़ा देखने का इतना वो नहीं मिलता देखने का वो, क्योंकि यदि आप उसको समय पर डेंगू को कंट्रोल कर लें, क्योंकि कई दफे क्या होता है जो डेंगू के अगर एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, उसमें शरीर में कहीं ना कहीं किसी अंग के अंदर कई दफे गैंग्रीन या कुछ इस तरह की चीज हो सकती है, कोई या कोई शरीर का कोई अंग थोड़ा वैसा हो सकता है, मगर वो एक स्टेज अगर आप सही तरह से अगर डेंगू के मरीज का इलाज हो रहा है तो उसमें वो सब चीजें नहीं होती हैं। मगर वैसे रूटीन में कोई ऐसा उसका ये नहीं कि आफ्टर लॉन्ग टर्म आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे कुछ नहीं होते हैं।
1: जी
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न
0: जी
1: करने के लिए, उम्मीद है आपको प्रश्न के जवाब मिल गए। और हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर, हेलो
2: हेलो शालिनी मैडम नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: हाँ जी एस चट्ठा बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: प्रश्न करें सर।
2: डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोविड के लिए वैक्सीन बनी थी तो क्या डेंगू के लिए भी कोई वैक्सीन बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं? दूसरा, डेंगू का वो खत्म करने के लिए लोकल अथॉरिटी स्प्रे करती हैं, तो वो उसका जो स्प्रे का जो धुआं होता है वो आम आदमी के लिए कितना हार्मफुल होता है?
0: बहुत अच्छा जी एस जी, आपने बहुत अच्छी चीज पूछी, दोनों प्रश्न आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आपने पहला प्रश्न पूछा कि जैसे कोविड के लिए वैक्सीन है, क्या इसके लिए कोई वैक्सीन है कि नहीं है। देखिए तीन देश हैं जहां पर कोविड की वैक्सीन ऑलरेडी लग रही है, मगर वो हमारा देश इसमें शामिल नहीं, मगर वहां पर वो अभी ट्रायल बेसिस पे। हमारे देश में वैक्सीन में हम उम्मीद करते हैं कि 2026-27 तक शायद हम वैक्सीन
1: मतलब
0: उसको
1: कुछ देशों में डेंगू की
0: कुछ देशों में वैक्सीन वो
1: जी।
0: अभी मगर लग रही है, मगर वो काफी समय से उनके, मगर वो अभी इंडिया हिंदुस्तान में अभी अभी वो नहीं आई है। हमारे यहाँ कुछ ट्रायल चल रहा है, ट्रायल स्टेज में है और उम्मीद है कि 2026-27 तक ये वैक्सीन शायद हमारे को उपलब्ध होगी। दूसरी चीज आपने बोली स्प्रे के बारे में, देखिए जो स्प्रे है जो हम जिसको फॉगिंग बोलते हैं, फॉगिंग जो असर करता है एडल्ट मॉस्किटो के ऊपर, जो व्यस्क मच्छर होता है जो उड़ता है मच्छर उसके ऊपर असर करता है, उसके कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि वो जो एडल्ट मॉस्किटो है उसको खत्म कर देता है, और एडल्ट मॉस्किटो खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर उसका एक टेम्परेरी इफेक्ट तो रहता है, मगर उसका एक नुकसान ये भी है कि उसमें फॉगिंग में डीजल या केरोसिन का इस्तेमाल होता है, तो कुछ ना कुछ जो सांस के मरीज होते हैं उनको थोड़ा सा नुकसान कर सकता है वो। दूसरा एक और चीज है कि उसमें फॉगिंग में कई सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि उस समय कहीं हवा तेज ना चल रही हो, दूसरा लोग अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खुले रखें ताकि वो फॉग जो है या धुआं जो निकालते हैं वो घर के अंदर तक प्रवेश कर सके। लोग वह क्या करते हैं कि जब फॉगिंग होती है तो उस समय बल्कि और घर के अपने दरवाजे बंद कर देते हैं कि बाहर के मच्छर कहीं अंदर ना जाए, जबकि फॉगिंग में तो उद्देश्य होता है कि जितने मच्छर हैं सब पे उसका असर हो, तो ये थोड़ा जानकारी इसके लिए जरूरी है लोगों को। मगर फिर भी मुझे उससे ज्यादा अच्छा लगता है जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं सोर्स रिडक्शन, कि जहां ये मच्छर पैदा हो रहे हैं हमारा उद्देश्य उस तरफ होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब एक हमें प्रश्न आया है कि क्या ट्यूबलाइट, जैसे आपने कहा दिन में काटता है ये मच्छर, तो क्या ट्यूबलाइट की रोशनी डेंगू के मच्छर को काटने के लिए लाइट का काम करती है क्या? ये माना जाएगा कि लाइट है।
0: मैं इस बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मैं अपने मेडिकल कॉलेज में अपने अपने स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं तो उनको कई बार उनको जानकारी देने के लिए कि उनके घर में कौन से मच्छर पैदा हो रहे हैं तो वो जरा इकट्ठा करके लाओ, तो उनको मैं ये थोड़ा बताता था कैसे मच्छर इकट्ठा करने हैं, तो उनको बोलता था पूरे कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके एक मॉस्किटो मैट जलाओ, उसका धुआं करो और एक लाइट खुली छोड़ दो, तो सारे सारे मच्छर उस धुएं की तरफ आकर्षित होंगे, उस लाइट की तरफ आकर्षित होंगे, धीरे धीरे बेहोश के नीचे गिर जाएंगे, अब वो उसमें इकट्ठे करके लो, अगले दिन उनको हैंड लेंस से आप आइडेंटिफाई करो, हम वो उनको सिखाते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मॉस्किटो है। तो ये जो प्रश्न है कि क्या वो ट्यूबलाइट की रोशनी वो मच्छरों को रोकने के लिए सही है कि नहीं है, देखिए जो भी कहीं भी कोई डार्क जगह होगी वो मच्छर वहां पर आराम करता है, रात के समय तो वो वैसे ही आराम करता है, दिन के समय वो काटता है, और दिन में भी जो अर्ली मॉर्निंग है सुबह का समय या शाम का समय, शाम से थोड़ा पहले या दिन में कभी भी वो काटेगा, तो कहीं रोशनी अगर थोड़ा अंधकार होगा तो वहां पर वो जहां अगर आपका शरीर कहीं खुला होगा एक्सपोज पार्ट होगा उसमें वो काटेगा, ट्यूबलाइट की रोशनी हो या बल्ब की रोशनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अंधेरा कहीं भी है तो वो वहां पर रहेगा और काट जाएगा।
1: जी तो हमारे श्रोता लगातार हमसे जुड़ रहे हैं फोन लाइन के माध्यम से भी और मैसेज के माध्यम से भी। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फिर बता दूं गाना खासतौर पर डॉक्टर साहब को बेहद पसंद है तो हम लोग भी सुन लेते हैं इस गीत को।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत डॉक्टर साहब, ये आपकी जो पसंद का हमने अभी सुना आशा जी की आवाज में, मन आनंदित हो गया, आनंद आनंद छायो, बिल्कुल। और अब हमारे श्रोता हमें और मैसेज और फोन कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि आपने बताया कि इसको पूरी तरह से इस पर काबू पाने के लिए डेंगू पर हमें मच्छरों पर काबू पाना होगा, तो क्या ये जो वेक्टर कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं और कैसे इसको फॉलो किया जाए, प्लीज बताएं।
1: हाँ शालिनी जी, मैं इसको संक्षेप में इसको ये थोड़ा चार हेडिंग्स में थोड़ा इसको कवर करना चाहता हूँ। देखिए, एक तो सबसे जो भी डेंगू का मच्छर है, मच्छर डेंगू से बचाव अगर आप कहें तो डेंगू से बचाव के चार विभिन्न तरीके हैं। सबसे पहला है आप अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा कैसे करते हैं, पर्सनल प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स। उसमें यह है क्योंकि बरसात और बरसात के बाद के मौसम में, जबकि वातावरण में ऑलरेडी आर्द्रता काफी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो मैं समझ सकता हूं उस टाइम में पूरे शरीर के वो ढके हुए कपड़े पहनना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। मगर कोशिश करें कि फुल स्लीव्स क्लोथ पहने, अपने शरीर को थोड़ा ढककर रखें, और अगर वो संभव नहीं है तो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स जो होती हैं, जो आप लगाते हैं जिसमें मच्छर आपके ऊपर ना आए, वो क्रीम्स बाजार में उपलब्ध होती हैं, वो लगा सकते हैं। दिन में यदि सोते हैं तो दिन में बेड नेट्स वगैरह ये मच्छरदानी का प्रयोग करें, स्पेशली बच्चों के लिए। खासतौर से कमरे में, जिस कमरे में भी आप काम करते हैं या रहते हैं, वहां पर कोई ना कोई मॉस्किटो रिपेलेंट जो आपके कॉइल्स वगैरह होती हैं या जो जो प्लगीज आते हैं वो इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका है कि आप मच्छर, जहां आपको लग रहा है कि मच्छरों का पानी पानी बहुत इकट्ठा होता है, जहां पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा है, वहां कहीं ना कहीं लार्वा पैदा ना हो पाए, ताकि मच्छर वहां पे अंडे ना दे पाए, तो उसके लिए जरूरी है, जैसे आपको बताया भी गया हो कि सप्ताह में एक बार अपने कूलर को ड्राई रखें। वो इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि जो मॉस्किटो जो पैदा होता है उसका पूरा चक्र 7 दिन का होता है, अंडे से लेके उसके एडल्ट बने तक 7 दिन का समय होता है, तो हफ्ते में एक दिन अपने जो जहां पे पानी आपका इकट्ठा होता है उन बर्तनों को साफ करके रखें। एक और चीज है, इस मच्छरों के जो एडीज के जो अंडे होते हैं वो अगर एक साल तक भी अगर उसमें कहीं अगर चिपके रहे, एक साल बाद यदि उनको पानी मिला तो फिर दोबारा वो पूरा मैच्योर हो सकते हैं, तो इसलिए उसके अंडे एक साल तक सर्वाइव कर सकते हैं, डेंगू के जो अंडे होते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि मच्छरों को जो जो आप जो वाटर कंटेनर है उनको आप सप्ताह में एक बार पूरा ड्राई करके साफ करके रखें, और अगर आपको लग रहा है जिनको आप इकट्ठा जिनको साफ करके नहीं रख सकते हैं, या जो उसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई तालाब है या कोई ऐसी जगह जहां पानी इकट्ठा रहता है, तो वहां पर जो पानी के अंदर मॉस्किटो लार्वाइसाइडल ऑयल होता है या दवाई आती है एबेट वगैरह, उसमें वो डाल सकते हैं, वो सरकारी सिस्टम में उपलब्ध होती है। तो ये थोड़ा जरूरी

0: या जैसे आप देखेंगे, जैसे इंडिया गेट है, इंडिया गेट के आसपास वाटर काफी सारे वो हैं, बोट क्लब वगैरह है, वहां पर गेंबुशा फिश या गपी फिश उसमें डाल देते हैं, वो जो है लार्वा को खा जाती है। और तीसरा सोर्स रिडक्शन, कहीं भी जहां आपको, आप कहीं भी पार्क में जा रहे हैं, लग रहा है कहीं भी घूम रहे हैं, जहां कहीं आपको लग रहा है कि आपके मच्छर पैदा हो सकता है, दिख रहा है कोई ऐसा बर्तन जिसपे कि इकट्ठा कुछ पानी इकट्ठा हो रहा है, उसको खत्म करें, उसको पैर से लुड़का दें। जैसे हम अपने यहाँ, मैं जिस मेडिकल कॉलेज में हूँ, लेडी हार्डिंग में, हम स्टूडेंट्स को जानकारी देते हैं कि जहां कहीं वो जब कभी राउंड लेते हैं, कहीं भी कोई लग रहा है कि कहीं पानी इकट्ठा दिख रहा है, किसी कोई पेप्सी कप पड़ा हुआ है, कोई कप पड़ा हुआ है जिसमें पानी इकट्ठा है, कोई ऐसी चीज पड़ी है उसमें लग रहा है पानी इकट्ठा, तो पैर से उसको उड़ाल दो, उसको क्रश कर दो, तो ताकि वो खत्म हो जाए। तो और सबसे बड़ी चीज, लोगों को जानकारी देना इस बारे में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें जरूरी हैं तो इसमें वेक्टर कंट्रोल मेजर्स के लिए।
1: जी, हमारे एक श्रोता ऑनलाइन पर हैं, देखें क्या पूछना चाहते हैं। हेलो,
2: मैं बोला किशन दिल्ली से।
1: जी, अपना प्रश्न करें।
2: मेरा प्रश्न ये है कि मच्छर जो है बुजुर्ग लोगों को ज्यादा काटते हैं, छोटे
1: किसको ज्यादा काटते हैं जानना चाह रहे हैं, बच्चों को कि बुजुर्गों को? जी,
0: किशन जी,
2: वो कम काटते हैं, बच्चों को मैं देखता हूं ज्यादा काटते हैं।
0: किशन जी देखिए, ऐसा मच्छर ना तो उम्र देखता है, ना ये देखता है कि वो मर्द है या स्त्री है जिसको काट रहा है। वो मच्छर तो सिर्फ ये देखता है, अगर वो मनुष्य का खून पिएगा तो वो सिर्फ देखता है मनुष्य है कि नहीं, वो किसी का भी, इसको इसके लिए कोई डिमार्केशन नहीं कि बच्चों को ज्यादा काटता है। मगर हाँ, उसका विकराल रूप किसमें ज्यादा होता है वो थोड़ा देखने वाली बात है। तो इसलिए जरूरी यह है कि हर कोई अपने आप को उससे बचा कर रखे, मच्छरों को काटने से बचाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया, विस्तार से बताया किस तरह से वेक्टर कंट्रोल मेजर्स हैं, मच्छरों को कैसे खत्म किया जा सकता है और किस तरह से करना चाहिए, कौन कौन से तरीकों से। ये भी बताएं कि अगर गर्भवती महिला है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको अगर डेंगू हो जाता है तो कुछ खास सावधानियां लेनी होती
0: है। देखिए, गर्भवती महिला को थोड़ा सा ये बहुत जरूरी है कि उनको, ये थोड़ा हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती हैं गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, क्योंकि ये जो डेंगू इन्फेक्शन है, स्पेशली जब कभी बच्चा डिलीवरी के टाइम में बच्चे से माँ से बच्चे में भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ थोड़ा गर्भवती स्त्री को खासतौर से ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी डेंगू के कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो दोनों पर, माँ पर और बच्चे पे, दोनों पे उसका इफेक्ट आता है। माँ को यदि गर्भवती स्त्री को होता है तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे का डेवलपमेंट, जो इंट्रायूटराइन डेवलपमेंट होता है, उसके ऊपर उसका असर आता है। और डॉक्यूमेंटेड है कि कहीं ना कहीं उसका वो इन्फेक्शन बच्चे में भी, न्यूबॉर्न बेबी में भी उसका इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को तो खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा एक और चीज मैं थोड़ा बताना भूल गया, सबसे ज्यादा जरूरी है कि घर में यदि कोई भी व्यक्ति जिसको भी इन्फेक्शन है, जिसको लग रहा है कि उसको डेंगू हो गया है, बहुत जरूरी है कि उस व्यक्ति को मच्छरदानी के अंदर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो व्यक्ति है जिसको भी डेंगू हुआ है, तो उससे अगर मच्छर काटेंगे तो वो कहीं ना कहीं मच्छर काट कर दूसरों को फैलाएगा। तो जरूरी है कि उस व्यक्ति को तो कम, इसलिए हॉस्पिटल में जब भी कभी आउटब्रेक होता है, हॉस्पिटल में डेंगू वार्ड सेपरेट बनाते हैं जिसमें सभी मरीजों को मच्छरदानी में लिटाया जाता है। तो इसलिए उनका, उनको एक तरफ इस तरह से आइसोलेट करना, इन द सेंस कि उनको मच्छरदानी में रखें ताकि वो दूसरों के लिए सोर्स ना बने, दूसरों को मच्छरों के,
1: जी, मच्छर अगर उन्हें काटेगा तो किसी और को फैला
0: और
1: सकता,
0: वो सबको
1: है।
0: फैलाएगा। जी
1: जी, अभी हमारे जो श्रोता इससे पहले हमारे साथ जुड़े थे, वो जानना चाह रहे थे कि बच्चों को ज्यादा काटता है कि बड़ों को, कुछ ऐसा, वो आपने बताया ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है डॉक्टर साहब कि कोई कोई लोग ज्यादा प्रोन होते हैं, उसकी जो परेशानी होती है, उसको डेंगू का जो एक स्टेज होती है, शायद वो उनको ज्यादा इफेक्ट करता है, तो उनमें से कुछ लोग होते हैं जो ओल्ड एज के हैं या जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है।
0: ये आपके पास सही, जो स्पेशली जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी, जिनकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होती है, बुजुर्ग लोग हैं, तो जाहिर सी बात है उन लोगों में तो ये सही बात है कि उनमें थोड़ा सा ये सब चीजें, उनका किसी, यही नहीं, कोई भी उनको बीमारी होगी तो उसका विकराल रूप उनके अंदर ज्यादा परिलक्षित होगा।
1: जी,
0: तो ये तो थोड़ा सही है कि इस तरह के लोगों में थोड़ा सावधानी उनको ज्यादा बरतनी होती है। जी।
1: अच्छा, एक डॉक्टर साहब, ये हमारे पास प्रश्न आया है, रंजन लाल जी लिख रहे हैं, फार्म हाउस में रहते हैं और उन्होंने लिखा है कि मैं दिल्ली के पास में एक फार्म हाउस में रहता हूँ, बारिश में बहुत बढ़ जाते हैं मच्छर यहाँ पर, तो मैं क्या करूँ? कुछ तो आपने बताया है लेकिन कुछ शॉर्ट में बताना चाहें तो, समय बहुत कम है। तो
0: देखिए रंजन लाल जी, यही मैं शुरू से इस बात को बता रहा हूं कि मच्छर जो है, बरसात और बरसात के मौसम, बाद का मौसम, ये दोनों मौसम ऐसे हैं जिस समय, क्योंकि टेम्परेचर उनको अच्छा खासा मिलेगा और ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी मिलेगी, उसमें तो पैदा हो गई होगा। तो मच्छर जहां बरसात, ये तो मच्छर ही मौसम बरसात का ही प्राणी है, बरसात या बरसात के बाद का प्राणी है, तो इसलिए तो जहां बरसात

0: डॉक्टर, आप फार्म हाउस आप बता रहे, फार्म हाउस में आप रहते हैं तो फार्म हाउस में तो आसपास कहीं भी अगर पानी इकट्ठा होगा तो जाहिर सी बात है फिर तो ये होगा।
1: तो बहुत सफाई रखनी है आपको
0: जी।
1: और बारिश आने से पहले ही आप पूरा ऐसा इंतजाम कर लें कि बारिश का पानी जमा ना हो कहीं पे। डॉक्टर साहब, हम जब बात कर रहे थे तो हम आपने अपने बात में भी कहा कि जनता का सहयोग बहुत जरूरी है इस मिशन में कि हम डेंगू मुक्त हों, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? हमारे बहुत सारे श्रोता आज सुन रहे हैं, आपसे प्रश्न भी कर रहे हैं, क्या सहयोग की उम्मीद करते हैं, क्या भागीदारी की उम्मीद करते हैं आप?
0: देखिए, एक सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हर चीज के लिए, हम किसी भी चीज के लिए सरकार की तरफ निगाह मारते हैं, सरकार की तरफ देखते हैं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, मगर कहीं ना कहीं किसी भी समस्या के निपटान के लिए, खासतौर से इस तरह की बीमारी जो होती है उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जनता का सहयोग आइडेंटिफाई करने में कि क्या समस्या है, क्या उसके कारण है और उसमें वो क्या सहयोग दे सकते हैं। आपको मालूम होगा कि जब भी कभी बरसात के टाइम में, उसके बाद में खुद जो सिविक एजेंसीज हैं, MCD, NDMC, ये सब ऑलरेडी कहीं भी आपके घर के आसपास कहीं कूलर में या कहीं मच्छर पैदा होते हैं तो आपके आसपास आ जाते हैं, आपको चालान काटना शुरू करते हैं, क्योंकि वही एक लीगल ऑप्शन बचता है अगर किसी घर में अगर मच्छर पैदा होते हैं तो। मगर ये मौका आना ही क्यों चाहिए, ऐसा हो ही क्योंकि कोई चालान काटे आके आपके घर पर, हम क्यों नहीं स्वयं ही जिम्मेदारी लेते हैं। और दूसरा एक और चीज है इसमें, मैं बहुत समय पहले कहीं एक बाहर गया था इस डेंगू सिलसिले में ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छा प्रयोग देखा। उन्होंने स्कूल के बच्चों को इस्तेमाल किया डेंगू को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को, इवन दिल्ली में भी ये किया गया था प्रयोग, बच्चों को डेंगू कार्ड उनको दे दिया गया, कार्ड दे दिया गया, उनको अपने घर के आसपास के 50 घर जाके वो चेक करेंगे कहाँ कहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, और जिस किसी के घर में मच्छर है तो वो जानकारी अस्पताल देंगे, उनको अध्यापकों को आके देंगे, फिर वहां पे वो सिविक एजेंसी वहां आके एंटी मॉस्किटो मेजर्स करती थी। तो इस तरह से बच्चों को, स्कूल के बच्चों को इसमें शामिल करना या गृहिणियों को इस काम में शामिल करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं महिला समिति बना के लोगों के घरों में जा जाकर देखें कहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं या कहाँ कौन कौन से ब्रीडिंग साइट्स हैं जहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, ये सभी का सहयोग इसमें जरूरी है। लोगों को जानकारी, लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है कि वो उनका क्या कर्तव्य है, वो कैसे इस समस्या को, क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी है कि यदि एक बार यदि आउटब्रेक हुआ, कभी भी ये कैबिनेट की फॉर्म में कभी हुआ, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल या प्राकृतिक तरीका ही है जबकि ये खत्म हो सकती है। यानी कि बरसात या जैसे मई या जून के, जून जुलाई में शुरू होती है ये बीमारी, और अगर आउटब्रेक यदि हुआ तो फिर ये नवंबर दिसंबर तक पीक होता है, फिर दिसंबर के बाद जब मौसम बदलता है तभी अपने आप ही खत्म होती है। तो ये एक बार यदि आउटब्रेक हुआ तो ये अपने आप ही कंट्रोल होता है, उसमें फिर ज्यादा कंट्रोल करने का फिर स्कोप ज्यादा रहता नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा किया जाए कि ये आउटब्रेक हुई ना, कभी भी डेंगू फैले ना, ये सभी का इसमें सहयोग बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब बोली कि सभी का सहयोग जरूरी है। हम अगर डेंगू मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे सारे श्रोताओं का और जितने भी लोग हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं उन तक भी ये मैसेज आप पहुंचा सकते हैं कि इस तरह की बात आपने सुनी है आकाशवाणी पर, रेडियो डॉक्टर पर, और ये बहुत जरूरी है। पर एक जिम्मेदारी और है डॉक्टर साहब मेरी, मैंने अभी श्रोताओं को प्रॉमिस किया था कि आप गाना सुनाएंगे तो वो जिम्मेदारी मुझे पूरी जरूर करनी है रेडियो डॉक्टर खत्म होने से पहले। तो आप प्लीज कुछ तो गुनगुना दीजिए, आप इतना अच्छा गाते हैं वही गाना हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता फिर पूरा भी सुनेंगे।
0: बड़ा आपने मुझे बड़े पेशो-पेश में डाल दिया।
1: नहीं, आपको तो बहुत सारे गाने आते हैं। आप ये मन्ना डे वाला गाना आप बोल रहे थे कि आप मन्ना डे जी वाला सुनाएंगे,
0: अच्छा,
1: तो यही गाना सुने जीवन से लंबी।

0: सच है जीवन से लंबे हैं जीवन के रास्ते, और इस वादे के साथ कि हम कर फिर होंगे आपके साथ, धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर एस के रसानिया, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली को, कि आप स्टूडियो में आए, आपने इतने सारे प्रश्नों का डॉक्टर साहब जवाब दिया हमारे श्रोताओं का। और आज हमने खासतौर पर प्रश्न, ये जो हमारा समय था राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच सर। और इसी तरह से जुड़ते रहिए रेनबो के साथ, जुड़ते रहिए रेडियो डॉक्टर के साथ, और आप सुनते रहिए ये आपका कार्यक्रम। आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं तो healthairdelhi@gmail.com पर लिख सकते हैं। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

हां जी, प्रोग्राम 102.7 एफएम रेनबो ते चल रहा है जी। हेलो जलंधर, ते जलंधर तो अलावा भी बहुत आसे पासे दियां जगह तो कॉल्स आ रही ने मेनू, मतलब कि पूरा पंजाब ही सुन रहा है जी इस टाइम प्रोग्राम। ते अज है भी एक बहुत ही खास दिन अज है जी, आकाश

0: और राही यूं ही चलते चलते आपके सामने आ गए हैं वर्ड एक्सप्रेस अगला सेगमेंट लेकर।
1: बिल्कुल ते अगला साडा वर्ड की है जी। बिल्कुल तुसी सही सुनिया जी, साडा आज दा वर्ड एक्सप्रेस है जी।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता

FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से है आकाशवाणी जलंधर द रेनबो चैनल। और शाम के 8:03 हो चुके हैं, 4 मिनट हो चुके हैं और प्रोग्राम शुरू करने का समा हो चुका है। ये प्रोग्राम केड़ा है जी? नैट वाणी जी। बिल्कुल जी, थोड़े नैट की वाणी की कहती है इस दे बारे असी पूरी जानकारी नहीं, जानकारी तो वैसे तुहानू भी है, बस असी दसांगे भी वो जानकारी जी, होर जानकारी वो तुसीं उत्तों किद्दां लै सकदे हो और नैट के उत्ते अपडेट्स कि आई हैं, कि नवे ट्रेंड्स चल रहे हैं, उस दे बारे पूरी जानकारी असी तुहानू देवांगे। दोस्तों IPL सारे ही देख रहे हैं जी। बिल्कुल जी, IPL कोई नैट पर देख रहा, कोई TV पर देख रहा, कोई अपने मतलब किसी भी चैनल के थ्रू देख रहा, और मैं भी लगातार मतलब लाइव देख रहा। लाइव मतलब मैं मैच नहीं देख रहा, लाइव स्कोर अपडेट्स जोड़े हैं वो देख रहे हैं जी। बिल्कुल तुम अपने फोन के उत्ते जी मीटिंग जी बैठे हो, कितने भी बैठे हो, मैंने पता IPL तो बिना कोई रह नहीं सकता। जी बिल्कुल जी, IPL है ही चीज़ इदा दी, इंडियन प्रीमियर लीग जी चल रही है वो इंट्रस्टिंग हौली हौली हो ही जा रही है जी, और उस दे विच सारी अपडेट्स तुहानू मिल ही रही ने। और फिर भी दस दिना अज का जिहड़ा मैच चल रहा है जी, KKR वर्सिज GT मतलब गुजरात टाइटनस, कोलकाता नाइट राइडर वर्सिज GT वर्सिज, तुहानू सारे नू पता है, मैनू दसन दी की लोड़ है जी। जिहड़ा मैच शुरू होया सी उहदे विच जिहड़ा कि गुजरात टाइटन्स ने बॉल नू चूज़ कीता है और KKR ने आ लाए जी 60 स्कोर बना ले हैं जी। वैसे तुहाडे कोल अपडेट कुछ होर आ रही होनी जिहड़े TV देख रहे होणगे, क्योंकि उहदे विच लाइव ते इहदे विच थोड़ा जिहा फर्क आ जांदा, क्योंकि इंटरनेट दे विच अपडेट होण नू थोड़ा जिहा टाइम लगता है, जिवें बिट्स बाइट्स फिर अगे किलोबाइट्स और मतलब बहुत सारी चीज़ां होंदियां ने, उह मेरी भी समझ तों बाहर है। जी बिल्कुल जी, कोलकाता नाइट राइडर जड़ी है वो बैटिंग कर रही है और एक आउट हो चुका है 6 ओवर मतलब, और 4 बॉलां हो चुकी ने, 60 स्कोर उन्होंने बना लिया। तो मैनू तो लगता वो 400-500 स्कोर नहीं बना इन्ना ज़्यादा स्कोर नहीं बनता, वैसे पंजाब किंग्स 11 ने बहुत वधिया स्कोर बनाया सीगा। और एक स्कोर होर आ गया जी, 61 हो गया जी, नाल दी नाल लाइव चल ही रहा, तुसीं भी देखो इंजॉय करो। और नैट दे विच असीं इहो जी चीज़ां देखते रहने, इंजॉय करते रहने, और नैट जिहड़ा सानू बहुत कुछ दिंदा है। देखिए जी, मैं तुहानू किन्नी महत्वपूर्ण जानकारी इच दे दित्ती। IPL बिल्कुल जी, IPL है ही इहो जिहा, क्योंकि सब मिलजुल के रहिंदे ने, मिलजुल के खेडदे ने, मिलजुल के मतलब क्योंकि हर एक टीम दे विच अलग अलग टीम का प्लेयर है, इंडिया का, न्यूजीलैंड का, या अफ्रीका का, IPL सानू बहुत कुछ सिखाता है, खेडां सानू बहुत कुछ सिखांदियां ने कि मिलजुल के रहना और अनुशासन दे विच रहना और खेडना। लो जी, एक छोका पै गया जी, देखिया नैट दे विच कितना मज़ा आता ना। चलो ये तो सी जी IPL दे बारे, नैटवाणी दे विच होर भी काफ़ी सारी चीज़ां असीं तुहाडे नाल सांझियां करांगे। जाना कितनी सुनते रहना FM रेमो जलंधर, दिल तो दिल तक, और आओ सुनते हैं एक प्यारा जो गीत।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: FM 102.7 MHz से है आकाशवाणी जलंधर दा केंद्र और तुसी प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो जी, केड़ा वाला नेट वाणी अपने दोस्त कुलदीप दे नाल जी। बिल्कुल जी, असीं गाना सुनिया मिले सुर, जिहड़ा कि दसदा है जी सारे सुर मिल के एक बहुत ही बेहतरीन या एक म्यूजिक बना देंदे ने। और उस तरह जिद्दां कि असीं IPL दी गल कर रहे सी, IPL दे विच वी सारे जिहड़े प्लेयर्स ने मिलजुल के खेड के बहुत वधिया तरीके नाल मनोरंजन करदे ने और उहदे विच एकजुटता भी दिखाई दिंदी है और एक दूजे नाल तालमेल भी बहुत वधिया जिहड़ा दिखाई दिंदा है। नैटवाणी प्रोग्राम दे विच असीं नैट दे बारे ही गल्लां करनियां, नैट दे उत्ते की ट्रेंड चल रहा है उस दे बारे गल्लां करांगे, नैट दे उत्ते की कोई खबर आई है जां कुछ भी है उह तुहाडे नाल सांझी करांगे। जे तुसीं वी साडे नाल कोई खबर जां कुछ भी नैट दे उत्ते जिहड़ा अपडेट आया न्यू ट्रेंड आया कुछ भी है तुसीं साडे नाल सांझा करना चाहुंदे हो तुसीं कर सकदे हो। मोबाइल नंबर उही है 9855101027 9855101027 9855101027। कोई भी अपडेट तुसीं मेरे नाल सांझी करो, मैं अगे बाकी जिहड़े साडे लिसनर्स ने उन्हां नाल सांझी करांगा और तुहाडा मैसेज जिहड़ा है वह इस दे उत्ते WhatsApp दे उत्ते जरूर जिहड़ा सांझा करांगा, शेयर करांगा और शामिल करांगा। दोस्तों गाने तो सारे ही बहुत ध्यान नाल सुनदे ने। बिल्कुल जी, जदों भी असीं जिम जाने आ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੂਟੂਥ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਗਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੋਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। May 2026 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੈਰਾਂ ਬੰਜਾਰੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ May 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਾਣਾ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 13 million ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਜਾਰੇ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੈਂਡ ਸਟਾਈਲ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ, ਕੈਚੀ ਮੈਲੋਡੀ ਦਾ ਮਿਕਸ ਖਾਲ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਗਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਹ ਸਪੋਟੀਫਾਈ 'ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਚਦੇਵ

FM 106.6 MHz से आकाशवाणी जलंधर का रेनबो चैनल और प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो नेटवाणी अपने दोस्त किदे ना दसना मैं चलो दस देना कुलदीप दे नाल जी बिल्कुल काफ़ी चीज़ां तुहाडे नाल सांझियां कर लिया कुछ जरूरी जानकारी कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ टिप्स और इस दे नाल ही गर्मियां आ गई बच्चों छुट्टियां जे पै गई तो तुसी घूमन भी जाना होना एक टूरिस्ट प्लेस तुहानू दस दिंदा तुसी उत्थे जा सकदे हो जे तुसी जा सकदे हो तो तुसी प्लीज़ चले जाना बहुत ज़्यादा और फेमस है मशहूर है जी बिल्कुल उसका नाम है जी ग्लोबल पद्धर से सब तो ट्रेंडिंग जी है वह है जी रॉयल याच ब्रिटानिया एडिनबर्ग के जी इसकी लो जी लोकेशन है वह मैं दस दिना ओशन टर्मिनल लीथ एडिनबर्ग EH66JJ स्कॉटलैंड UK लिख लिया ना चलो कोई नहीं ये तो मैं वैसे दसी लोकेशन ये सब तो ज़्यादा ट्रेंडिंग दे विच है सब तो ज़्यादा फेमस है ये जड़ी है और ये ट्रिप एडवाइजर के 2026 के टॉप अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड विच नंबर एक ते है महरूम महाराणी एलिजाबैथ का 44 साल शाही जहाज़ हूँ स्कॉटलैंड च स्थाई म्यूजियम लोगों दिया रिव्यूज़ मुताबक समय विच सफ़र करन वर्गा अनुभव है

FM 102.3 MHz से है आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल और तुसी प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी दिल चाहता है अपने दोस्त कुलदीप दे नाल। जी मैसेज आए साडे कोल आदरणीय प्रसारक जी, नमस्कार आदरणीय प्रसारक जी, आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत के साथ शामिल कीजिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया जी। लिखे किरण है जी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार तो जी मैसेज लिखा जी। उस तो बाद चक 14 PSB जिला श्री गंगानगर तो कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, वनराज विरक ते ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।

दोस्तों एक मैसेज हो रहा है जी झज्जर हरियाणा तो बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया और कह रहे ने कोई भी सदाबहार गीत दे विच शामिल किया जाए जी। और एक और मैसेज आया साढ़े को कह रहे ने जी मैसेज किया है जी आप हमें किसी भी गीत में शामिल करें। लिखिया जी जॉन डिकैस्ट्रो रोजी डिकैस्ट्रो पर्ल डिकैस्ट्रो विलिस डिकैस्ट्रो जी ने मैसेज किया है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और कह रहे हैं कि रिस्पेक्टेड होस्ट जी भाई थैंक्स फॉर नाइस प्रोग्राम विद लवली सॉन्ग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इस तों अलावा एक होर मैसेज जो साढ़े को आया वह भी आप शामिल कर लें इस प्रोग्राम के। कह रहे जी प्रोग्राम दिल चाहते हैं पिंड कल्याण ਮਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਚਨੂਰ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲਿਖੇ ਜੋ ਖਤ ਤੁਜੇ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਮੂਵੀ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਆਸ਼ਾ ਵਾਰਿਕ ਕਾਸਟ ਹੈ ਸਿੰਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਔਰ ਲਿਰਿਕਸ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਸੇਜ

FM 102.7 MHz से है आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल और तुसी प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो जी दिल चाहता है अपने दोस्त कुलदीप दे नाल। ये दोस्तों समा हो चुका है 9:55 ते समय दा सच्ची पता नहीं चलदा कदों इह समाप्त हो जाता है और मैनू ये जिहड़ा टाइम है ना लास्ट वाला टाइम बहुत ही मतलब मैनू मज़ा नहीं आता इस दे विच तुहाडे तों इजाजत लैण दा मन नहीं करदा क्योंकि फरमाइशां बहुत सारियां पेंडिंग पईयां ने बहुत सारे मैसेज साडे कोल पेंडिंग पे हुए ने पर चलो एंड टाइम के जिन्ने भी मैसेजेस मैं इस प्रोग्राम दे विच शामिल करन दी कोशिश करूँगा जरूर करूँगा पर लास्ट फरमाइश इन्हां दी लै लैने आपां मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति अरोड़ा भूमिका अरोड़ा जी दी जुर्माना सावन के झूले पड़े ये पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो इन्होंने मैसेज किया है जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई और इन्हां दी फरमाइश आपां रेडी कर ली है जी और फरमाइश आपां थोड़ी देर बाद प्ले कर दें बाकियों के मैसेज एक बार लै लैने मैसेज आया जी दनोरी तैलीवाल तो निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया आयान बाबू जी ने कह रहे ने कोई भी गीत एक मैसेज किया जी सानू नहीं पता किन्होंने किया लेकिन लिखा जी हैलो सर और हैलो सर लिख के इन्होंने मतलब कह दिता और इस तो अलावा जो साढ़े को मैसेज हो रहा है जी रवि कुमार राहुल रणजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका गुरकीरत मन्नत सिमरत गुरशब्द सिंह राहुल जी ने मैसेज किया जी कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा तो जी इस तो अलावा सानू जजोड़ी तहसील खरड़ जिला SAS नगर तो लियाकत अली निशा शाहीन यासमीन अरमान मलिक वालों सारे आकाशवाणी परिवार को प्यार भरी सत श्री अकाल जी कह रहे ने कोई भी गीत उस तो अलावा जिहड़ा मैसेज साढ़े को आया जी होर आया जी सरबजीत सिंह जोसन सरबजीत कौर जोसन गुरमन मेलबर्न आस्ट्रेलिया तो आदर्शपाल जोसन वैंकूवर कनेडा तो रॉबिन सिंह जोसन कह रहे ने जी भेजा मैसेज इन्होंने जोसन चक 15 PS जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो मैसेज किया है जी और इस अलावा इन्होंने राजस्थान तो एक होर मैसेज आया साढ़े को लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित खुशी गोस्वामी जी ने मैसेज किया है जी सानू बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई इस तो अलावा एक और मैसेज साढ़े कोल आया सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी निमित अहूजा जलालाबाद तो जी इन्होंने मैसेज किया बहुत बहुत शुक्रिया सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी तो

नेहा जी ने एक बहुत ही प्यारी कविता लिखी है, लिख रहे ने, कुछ पल ठहर कर हमसे भी दो प्यारी बातें करो, कभी खुद से भी ज्यादा तुमसे हमसे तुम प्यार करो, रूठने मनाने की हम झोलियों में हमें भी कभी तुम शामिल करो, छोटी कुछ खुशियां किस्से कहानियां हमसे भी कभी तुम बयां करो, हंसते रुलाते साथ हमारे तुम आगे बढ़ो, अपने ख्यालों में अनजानी राहों में हमसे भी कभी तुम प्यार करने की हिमाकत करो, कभी कुछ दूर चलकर पीछे मुड़कर हमें भी कभी तुम याद करो, दो पल ठहर कर कुछ प्यारी बातें करो।

मेरा साजन प्यारा दिलकश अजीज़ है, उसके बिना जीवन मेरा लगता मरीज़ है। उसकी बातें लगती सुहानी, उसकी बातें लगती सुहानी दिल को भाती हैं। जब भी दूर जाते हैं मुझसे उनकी याद आती है।

FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से है आकाशवाणी जलंधर दा केंद्र, और रात दे 10:31 हो चुके ने। प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी, एक प्यार का नगमा है। जिस विच प्यारे प्यारे नगमे ते प्यारी प्यारी शायरी थोड़े नाल सांझी करेगा थोड़ा दोस्त कुलदीप। हम आज कहीं दिल खो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे। हरदम जो कोई पास आने लगा, भेद उल्फत के समझाने लगा। नज़रों से नज़र का टकराना था दिल के लिए एक अफसाना। हम हाथों से दिल को खो बैठे, हम आज कहीं दिल को बैठे।

सब पूछते हैं मुझसे बता तो तेरा यार कैसा। सब पूछते हैं मुझसे बता तो तेरा यार कैसा है। बस इतना कहती हूँ उनसे बड़ा भोला और सीधा सा है। बहुत प्यार करता है पर कभी शब्दों में बताता नहीं है। हर पल परवाह करता है मेरी पर कभी जताता नहीं है। कभी जो रूठ जाऊँ उससे प्यार से गले लगा लेता है। उसके प्यार के आगे मेरा गुस्सा कहाँ टिक पाता है। मेरा हर दिल उनसे है, मेरी हर शाम उनसे है, दिल की धड़कन उनसे है, होठों पे हंसी उनसे है। बिन कहे वो समझ जाता है मेरे दिल की हर बात। दुआ है दिल से मेरी ना छूटे कभी तेरा साथ।

देखकर तुझको सांसें मेरी हवाओं से लबरेज हो जाती हैं, धड़कने हैं कि संभलती नहीं उसी पल तेज हो जाती हैं। सुकून दे सकूं हर वक्त तुझको, सुकून दे सकूं हर वक्त तुझको, बातें ये मेरी सेज हो जाती हैं। यूं तो खड़ा हूं अपने अंदाज में, ये रूह है कि रंगरेज हो जाती हैं, ये रूह है कि रंगरेज हो जाती हैं।

तेरा हुस्न है जैसे कोई इबादत का नूर, जिसमें बसा है मेरी जिंदगी का सुरूर। चांद भी शर्माए तेरी एक झलक पाकर, चांद भी शर्माए तेरी एक झलक पाकर, तारे उतर आते हैं जमीं पर मुस्कुराकर।

सजी है महफिल चिराग रोशन है, सजी है महफिल चिराग रोशन है, चारों तरफ महके हुए गुलशन है। कोई जाम झलक रहा है खुशी में, कोई जाम छलक रहा है खुशी में, तो कोई अश्क छुपा रहा है महफिल में।